0: आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा।
3: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
5: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है, बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं है। और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबौर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबौर कृष्णकली भी शामिल है।
3: मैम, अगर अब हम बुवाई की बात करें तो बुवाई करने की क्या विधि होती है?
5: बैगन को लगाने के लिए एक हेक्टेयर फसल के लिए लगभग लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यही पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग लगभग 250 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि एक मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और दो जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज, क्योंकि बैगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है, और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौधा है उसका रुपाई का समय होता है एक महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है। इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं, और एक महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
3: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
5: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से। और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
3: जी। और रुपाई की विधि क्या होती है?
5: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाते हैं, उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रुपाई करते हैं। तो रुपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं, और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है। और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है, उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं, उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है, इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
3: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
5: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं, यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है, उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रोपाई के 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
3: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
5: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
3: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
5: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे, और जब शरतकालीन जो फसल होता है जब हार्वेस्ट होने लगते हैं फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पे जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
3: मैम, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
5: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
3: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
5: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए। हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है, पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहां तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसके छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
0: और मैम रोग भी काफी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
5: बैंगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का, वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है, तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा, बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बन डाइजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटलाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं, तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है, तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं, तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
0: मैम अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए और उपज कितना होता है बैंगन का?
5: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पे करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है, मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
0: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
5: धन्यवाद उमा।
0: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
6: उन्नत कृषि।
7: फिर पिट गया। बेल देना।
8: इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
9: कब से?
8: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
9: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
8: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
9: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
8: डॉक्टर, खांसी तो है।
9: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
8: टीबी?
9: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
8: ठीक है।
9: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
11: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजिंग की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, कार्बन डाइजिंग के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके जाम। मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कम्पोस्ट क्या होता है।
1: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊँ, वर्मी कम्पोस्ट जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कम्पोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कम्पोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
0: जी,
1: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना। तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है, उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
0: जी, तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
0: अच्छा,
1: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है। यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फास्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहाँ जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 PPM पाया जाता है, लोहा 528 PPM पाया जाता है, तांबा 8 PPM पाया जाता है, मैग्नीज 161 PPM पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया।
0: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
1: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान, एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो बर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
0: जी,
1: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान समानता कम होता है पार्थेनियम की तुलना में।
0: जी,
1: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो बर्मी कंपोस्ट बनाया था, उस बर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम, और जो 60% है वो

0: पर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 0.698 ये 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808%, यानी 0.8 के, यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे आप इनडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, तो हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब ये बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें हम, वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए बर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1,000 से 2,000 केचुआ डालना चाहिए। 1,000 से 2,000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 60% 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से, और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, लगभग दो तीन तीन हफ्ते चार हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को तीन चार दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे। अच्छा। वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहां पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा। इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए, और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहां पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे। इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहां पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, एक दो हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहां पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है इस ढंग से करके। जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताएं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे, और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा, और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है,
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
7: यस मैम।
6: आह, क्या बात है
7: मैम।
6: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
6: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
7: यस मैम।
6: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
7: अच्छा।
6: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
7: अच्छा।
6: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
7: अच्छा, मैंने भी देखा है।
4: आरा और वली याने अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
8: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
9: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
6: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
7: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
4: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
6: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
4: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
6: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
9: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
6: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
7: सॉइल इरोजन,
6: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
4: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
6: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
7: हाँ, जी मैम।
9: यस मैम।
6: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
7: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
6: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
9: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
6: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
4: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
6: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
4: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
6: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
4: ओह,
6: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
7: जी मैम।
4: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
7: बहुत अच्छी लगी।
4: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
7: धन्यवाद सर।
9: धन्यवाद मैम।
0: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला,
3: ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
4: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
3: जंगल के साथी।
10: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
11: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।

0: एक हिरन भाई एक हिरन, क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश।

0: रंगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं भाई। उसका कोई साथी नहीं भाई। उछलता रहता कभी कहीं भाई। उछलता रहता कभी कहीं भाई।
2: मेरा कोई साथी नहीं। अब मैं क्या करूं भाई।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश। एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
7: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
8: कब से?
7: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
8: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
7: खांसी?
8: हाँ।
7: इसको तो एक आध महीना हो गया,
8: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए,
7: डॉक्टर खांसी तो है।
8: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
7: टीबी?
8: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
7: ठीक है,
8: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
10: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
9: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
11: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
12: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
14: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
12: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
14: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं, वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
12: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
14: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
12: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
14: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
12: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
14: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
12: और बुआई की विधि क्या?
14: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिमा, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
12: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में हो
14: जाए। देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
12: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
14: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है। फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
12: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
14: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है। वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है, बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
12: सर खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी

0: शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप

0: पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: अंटार्कटिका देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीन के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
1: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
0: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
2: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उससे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थीं। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थीं, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
2: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
2: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
0: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
2: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, न कोई दर्द, न बुखार, न कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता नहीं चलता।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बापरे, ये तो बहुत खतरनाक बात है, इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
2: यही तो अच्छी खबर है प्रिया, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
2: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
2: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए, जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
2: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
2: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
2: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
2: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
0: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
2: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइए।
2: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: सही कहा आपने।
2: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
2: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
0: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
2: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
2: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
2: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा, यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाईं, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
0: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
2: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, यह कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
2: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम। करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ अनु और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, हम बात करते हैं आज अपनी मृदा के बारे में और जल के बारे में। जी हाँ, अगर मृदा और जल नहीं रहेंगे तो हमारे किसान भाई फसल कहाँ से उगा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस जल से सिंचाई कर रहे हैं, आप जिस मृदा में फसलों को उगा रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हों, और इसीलिए समय समय पर मृदा परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिस जल से सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई उसका परीक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो आज हमारा विषय यही है, मृदा जल परीक्षण। और इसके बारे में आप सभी को विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DK वर्मा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मृदा परीक्षण कब करना चाहिए।
6: अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो होते हैं उनको ये हमें सही से अनुमान नहीं होता है कि हमें मृदा का जो है कि सैंपल कब इकट्ठा करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। जब भी हमको मृदा का करना हो परीक्षण, उसके पहले हम जो है कि जब तक उसकी सॉइल सैंपलिंग यानी कि हमें नमूना का संग्रह ठीक से नहीं होगा तो हम उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट जो है कि वो सही से नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना होता है कि पहले उसका नमूना कैसे संग्रह किया जाए। नमूना संग्रह करने के लिए हमें फर्स्ट होता है कि जब भी हमें क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, कोई भी फसल हो, जैसे अभी हमारी धान की फसल की कटाई हो गई हो, हाँ, या तो गेहूं की फसल की जब कटाई हो जाती है उसके बाद ही जो है कि हमको उसका संग्रह करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो है कि ऊपर परत जो है कि हमें अगर हमारा 10 से 12 कट्ठे का ज़मीन है या 1 बीघे का ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग हमको जो है कि सैंपल को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4-5 जगहों से जिग जैग आकार में रैंडम विधि से कहीं से भी सैंपल को हमको इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है उसको हमें अच्छे से उसको खुरपी से फावड़े से साफ कर देना चाहिए, फिर भी शेप में आकार में जो है कि हमको मिट्टी का संग्रह करना चाहिए ताकि वो 0 से 15 सेंटीमीटर का जो हमारा लेयर होता है वो उसमें आसानी से मिट्टी आ जाए।
5: जी जी।
6: और ये क्रिया हम लोग जो है कि 5-7 जगहों से करें, कम से कम 1 kg सैंपल हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं।
5: जी। समय की बात करते हैं, कब करना चाहिए, किन फसलों में समय भी एक एक्यूरेट समय होता होगा कि विभिन्न फसलों के लिए इस समय करना चाहिए मृदा परीक्षण, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए।
6: जैसे हमारा हो गया कि बहुत सारी हमारी जो है कि ये फसलें होती हैं जो कि सीरियल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, सीरियल्स वाली फसलों में क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए
5: जी,
6: हमारा कटिंग हो गया है और बुआई का कम से कम एक दो महीना उसको हमारी मिट्टी जो है कि खुला रहती है, उसमें कोई क्रॉप हमारा नहीं ग्रो किया जाता है, उस टाइम पे जो है कि हमको मृदा परीक्षण कर लेना चाहिए और मृदा परीक्षण मतलब कि उसका सैंपलिंग कर लेना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई लोग जो है कि जुताई उताई कर देते हैं और उसको जो है कि खाद भी कभी कभी गोबर की खाद ये सब डाल देते हैं, तो इस कंडीशन में जो है कि हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उसमें कोई भी खाद फर्टिलाइजर अगर डाल देते हैं तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, ताकि वो उसका वो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा और जो है कि वो आप जो अलग से डाले हुए हैं खाद है ये सब चीज़ें हैं उसमें अगर वो ऐड हो जाएंगी तो आपका नमूने का सही रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए जब भी कोई भी क्रॉप हो उसको बुआई से पहले हमारा जो है कि उसको हमें सैंपल को इकट्ठा कर लेना चाहिए, और जब भी हमें बुआई से हो तब तक अगर हम आप जो लेबोरेटरी है अगर वहाँ पे हमारा सैंपल चला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग सोइंग के टाइम में अपना खाद का उपयोग कर सकते हैं
5: जी। इससे क्या लाभ मिलेगा किसान भाइयों को?
6: हाँ, इसमें लाभ क्या होता है मैडम कि हमारा जितना भी फसल हो रही है उसमें किसान भाइयों का क्या हो रहा है कि लागत जो है कि हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारा उपज जो हो रहा है वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसका फसलों का जो है कि दाम मिलेगा, तो अगर हम लागत को ही पहले ही कम कर दें तो हमारे फायदे जो है कि और डबल हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि वो उससे होता क्या है कि हमारा जो इनपुट यूज कर रहे हैं जो कि खाद है, अगर हमारा नाइट्रोजन चाहिए मान लीजिए कि 150 kg, और लेकिन हम लोग फार्मर्स बिना उसको जांच किए हुए उसको जो है कि 200-250 kg हम लोग पर हेक्टेयर डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा इनपुट उसमें बढ़ जा रहा है
5: जी।
6: क्योंकि सही आपको पता नहीं है, मिट्टी तो कभी ये नहीं कहेगी कि हमको मत डालो, जैसे ओवर डोज होने के बाद आदमी के शरीर में किसी चीज के हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी में रिएक्शन तो जो है हो रहे हैं वो दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो घट जा रही है उनको नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखते हुए और सही एक्यूरेसी देंगे तो हमारे लागत को जो है कि कम किया जा सकता है उससे।
5: जी, अभी आपने कहा था कि नमूना संग्रह का तरीका थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए नमूना संग्रह करते समय?
6: हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो कि हमें कैसे नमूना को संग्रह करना चाहिए। नमूना संग्रह करने के लिए मैडम जो है कि हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला होता है कि जो हम जब भी कहीं भी सैंपल लें नमूना संग्रह कर रहे हैं तो जो हमारे खेत की चारों दीवार होती है मेड़ होती है बंड बनाया जाता है चारों तरफ, उससे जब भी हो कम से कम 1-2 feet दूरी बना के हमको सैंपल लेना चाहिए। मेड़ के नज़दीक कभी भी सैंपल नहीं लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि बगल वाला फील्ड का भी जो है कि उसका जो है कि फर्टिलाइजर लीचिंग सीपेज हो रहा है पानी से हो रहा है तो वो सब चीजें
5: आ सकती,
6: इससे उसका रीडिंग सही नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम फसल का सॉइल सैंपल ले रहे हैं किसी भी जगह का, उसमें हमको ये ध्यान देना चाहिए कि वो नमी ना हो उसमें। अगर मृदा में बहुत ज्यादा नमी है उस समय भी अगर हम लोग ले रहे हैं सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी उसका जो है कि वो सही टाइमिंग नहीं होता है, उससे आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है कि असुविधा हो सकती है सैंपल को लेने में, उसको रखने में, सुखाने में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको हमें नमी के चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जब मॉइस्चर ऑप्टिमम रहे, पैर उसमें आसानी से आ जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तभी हमको सैंपल लेना चाहिए। और तीसरा होता है कि आप जब भी सैंपल लें तो ऐसी जगह से सैंपल लें जहाँ पे कि कहीं पे खाद, या किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि किसी खेत के कोने में जो है कि गोबर ओबर इकट्ठा करते हैं, बाद में उसी को उसी खेत में डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बना के हमको लेना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट ना आए।
5: जी जी,
6: ठीक है
5: जी। तो यहाँ पर हमने मृदा परीक्षण के बारे में तो बहुत सारी बातें की, अब चलते हैं जल परीक्षण की तरफ। तो हम अभी खेती की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे सिंचाई योग्य जल की, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये जो जल है ये उपयुक्त है सिंचाई के लिए?
6: बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं ये जल की महत्ता को भी लोग नहीं जान पाते। ऐसा नहीं है कि उनको पता चीज़ें नहीं होती हैं कि जल क्या है वो है, लेकिन वो केमिकली क्या है उस हिसाब से हम लोग जो है किसान अभी नहीं ध्यान दे पाते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म में होता है। सडनली जैसे हम लोग अगर कहीं पे फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा है फसलों पे, लेकिन जल का जो ऐसा एक चीज़ है जो कि वो तुरंत उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जल के जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे एरिया हैं जो कि जैसे आपका कोसी रीजन देखिए, वहाँ पे आयरन की बहुत टॉक्सिटी है। हाँ, और हमारा इस जगह पे हमारे भागलपुर में फ्लोराइड और आर्सेनिक की भी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो एक्चुअली क्या है कि हमारे फसलों के लिए नहीं है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा जो है कि हानिकारक है। और कुछ जैसे फसलों के लिए जो मेन मुख्य होते हैं वो हम लोग देखते हैं हमारा ईसी, जिसको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, और उसमें जो है कि पीएच कितना हो रहा है, एसएआर कितना है। एसएआर मतलब क्या होता है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और होता है हमारा आरएससी, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। तो एसएआर जो होता है वो रिप्रेजेंट हमारा करता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है और कैल्शियम मैग्नीशियम के हिसाब से। तो इन चीज़ों से जो है कि जो हमारा ईसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करता है कि आपका साल्ट कंसंट्रेशन जो हमारे सॉइल में वाटर में है वो आपको बताता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है किसी भी जो है कि जल के जिसमें हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो हमारे फसलों के लिए लाभदायक नहीं है
5: जी।
6: ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और इसी प्रकार से एसएआर वैल्यू जो है, एसएआर वैल्यू को जो है कि हम लोग जो है कि कैलकुलेट करते हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम इस सब हम लोग पहले एनालिसिस लैब में किया जाता है, उसके बाद हम लोग जो है कि उसका रीडिंग बता सकते हैं। अगर एसएआर वैल्यू आपका जो है कि मोर देन 18 है, 26 है, तो क्या होगा कि ये जल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए ऐसे जल का हमें जो है कि अवॉइड करना चाहिए
5: जी। जी, अगर जो जल है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं यानी कि सिंचाई योग्य नहीं है तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
6: बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि अगर हम उस दूषित जल से, या तो जो हम कहेंगे कि हमारा जो सिंचाई का जो साधन है, जो जल है, अगर उसमें हमारा साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अगर कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं तो जो हमारी मृदा है उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसमें जो हमारे बहुत सारे सॉइल में मृदा में माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स होते हैं, जिससे कि पानी का मूवमेंट होता है, क्योंकि जो हमारी मृदा है उसमें हवा का पानी का संचार उचित मात्रा में होता रहता है हमेशा। तो जैसे कि जल का वर्षा का जल है वो पानी में नीचे जाता है, अगर कभी सूखा पड़ जाता है तो नीचे से पानी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये जब अधिक साल्ट हो जाते हैं तो उसके जो मृदा के जो छिद्र होते हैं माइक्रोपोर्स मैक्रोपोर्स वो सारे के सारे वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसमें एक सतह मोटी पर्त की तरह भी बन सकती है अगर ज़्यादा हो रहा है तो। उससे क्या होगा कि आपका मूवमेंट पानी का रुक जाएगा, जिससे पौधों को जल की कमी होने शुरू हो जाती है, पानी रहते हुए भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी डिफिशेंसी होने लगेगी, जो कि उसमें हम लोग खाद अप्लाई करने के बाद भी वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कभी कभी होता है कि किसी चीज़ की टॉक्सिटी जिसमें सोडियम की कैल्शियम की इसकी जो है कि टॉक्सिटी होने लगेगी, जिससे पौधा का जो है कि वो सूखने लग जाता है। तो इस टाइप का उसमें बहुत सारी कमियां धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता
5: जी।
6: है
5: सर, अगर किसी किसान भाई के पास ये मजबूरी है कि वो सिंचाई योग्य जल उनके पास नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिससे कि वो उस जल को सिंचाई योग्य बना सके, या कोई और तरीका जिससे कि वो पानी को उस तरीके से यूज़ करके, उस तरीके से ला करके, उपलब्ध करा करके सिंचाई कर सके?
6: जी, इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि अगर हम लोग जहाँ पे देखें कंटिन्यूस हम लोग सिंचाई का जल यूज कर रहे हैं, अगर अगर हमारे पास साधन नहीं है तो पहले तो फर्स्ट हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हमको उस जल का परीक्षण करना पड़ेगा, ताकि पता भी चल सकता है हमको कि उसमें क्या हमें कमियां हैं, या किस चीज़ की उसमें टॉक्सिटी हो रही है। पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वर्षा का जल, जो कि बहुत ही शुद्ध जल होता है, वो अगर हम कहीं पर भी इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग जल संचय कर सकते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना सकते हैं। इस पर भी गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तालाब बना के उसके द्वारा जो है कि हम लोग सिंचाई के जल को कर सकते हैं। या तो ऐसा कुछ हो जहाँ पे नदी हो अगर, या आपका नहर का भी है तो उसमें कर सकते हैं, या तो फिर आपका जैसे हो सकता है कि जहाँ पे अगर बहुत ही कम आपको सिंचाई का है तो एक दो आप जो है कि उस पानी से अपना दे जो आपका है, और बाकी एक दो अगर सिंचाई हो सके तो आप जो है कि जो है कि वर्षा जल संचय जो किए हुए हैं उससे करके मिला के दोनों को करने से भी हमारा जो है कि उससे बहुत ही लाभ हो सकता है।
5: जी तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा जल परीक्षण, इस विशेष वार्ता, इस विषय पर विशेष वार्ता, और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
6: नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से, यानी FM ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहाँ पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं, और और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।
7: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
9: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
7: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
9: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी, तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे, और ये विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
7: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
9: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम अच्छा। लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें, फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे, तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद, फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑयस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पेंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12 से 15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग लाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते थे, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 साल सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लीजिए, सारा को मिलाकर के भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है ये सब है तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे, निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीव

0: पानी हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको दो बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम एक बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिये लेंगे, 1 भागिये लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर ले करके हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना, ये हम लोग करते हैं फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग का है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित तो उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है, और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर

0: देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे, तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकों, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया।
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, कार्बेंडाइजिम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए एनो 53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है। तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए इस पर बैन लगाया गया है, कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है जिससे फल 24-48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है। तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत

0: धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उन्नत कृषि।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
5: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
5: डॉक्टर खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 15 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। आपको बता दें, बांका नवादा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में हुई जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई कर ले और बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीम की 2 ग्राम मात्रा के साथ उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रखें, कार्बन डाइजीम के 2 ग्राम मात्रा से आप 1 किलो बीज को उपचारित करेंगे। 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई कर ले और मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, श्री अन्न की भी खेती आप कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई की जा सकती है। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई करें और ध्यान दें कि बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें। और किसान भाई बहनों, अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रित करें और पत्ती खाने वाले सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहना बहुत जरूरी है। अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमिथोएट 30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अरका कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचों में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून के महीने में टीके अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस महीने में उन्हें टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है. लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें. खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
0: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
1: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और मैं हूँ अनु। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, DSR के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
5: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं या एजोस्पर्म की बात करते हैं या अजोला की बात करते हैं या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं, सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
4: जी, मतलब पोषक तत्व देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
5: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें जो नाइट्रोजन देता है तो उसमें आप एजोस्पर्म प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको एजोस्पर्म होगा तो एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। फॉस्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30-40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
4: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है तो क्या इससे क्या फायदा मिलेगा धान की खेती में सर?
5: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30 से 40 किलोग्राम, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फॉस्फोरस भी, पोटास भी, ये सबकी बचत करता है। क्योंकि इसमें यदि देखें तो नाइट्रोजन इसमें 4.5% से 5.5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से 4% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं, तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास धान को दिया, उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हजार रुपये का आप खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं तो ये फायदा है।
4: ठीक है, मतलब जो है आय जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी बात है जानना।
5: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज ज़रूरत है टिकाऊ खेती की।
4: बिल्कुल,
5: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की ज़रूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, या आपकी मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2%, 0.2%, 0.3%, 0.4% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व तो लॉस कर जा रहा है, तो वह पोषक तत्व तो हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीज़ें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण, तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्नोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है, यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है, तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें? तो इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं, एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है बरसात के दिनों में, तो वैसे भी खेत में पानी रहता है, कोई समस्या नहीं है, तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रोपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें, वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए, वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा, वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है और SSP ये हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा। और अजोला कम से कम 1 क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा, जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में ये अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं, उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा चाहिए, इसमें 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा, डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया, उसी समय आप सिर्फ 1 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वह अजोला को डाल दीजिए। और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फास्फोरस डालते हैं, जो भी उस फसल के लिए डालते हैं, उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा SSP पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा कि ये 3 हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा, उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए, यह अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा।

0: जितनी आपने मात्रा डाली है, मान लीजिए एक धान आप यहाँ बिहार के कंडीशन में करते हैं तो 100 केजी आप उसमें डालते हैं नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 20 केजी पोटास, तो इसकी मात्रा को आधी कर दीजिए और अजोला जो है क्या कहते हैं आप डालते हैं तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ हमको उर्वरक पर होने वाला खर्चा भी बचेगा। यदि मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपया आपको खर्चा हो रहा है तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपया उसमें खर्चा होगा, यानी 2-2.5 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये है
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फ़ायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज़्यादा हो सके आप उपयोग करें और अजोला भी बिल्कुल फ़ायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
0: एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई, हमने कहा था कि यदि आप जो स्पायरलम यूज़ करना चाहते हैं या पीएसबी यूज़ करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यदि प्रयोग करना चाहें तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, ये जो स्पायरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पायरलम या पीएसबी ही, और उसको आप डुबा दीजिए और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पायरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पायरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बा।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है,
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आते हैं।

0: मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान. अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों. लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है, तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए. देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है. एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है, और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज. तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है. लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है. तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज. तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है. अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा. तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है. इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है. दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं. जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को, या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है. और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की. कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं, जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है. और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं. तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है, और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है. और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली. आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है. हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है. और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है. और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है. इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है. कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है, और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है. और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं. और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं. पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है. अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो. वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो, आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए. ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं. इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं. हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है. हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, और फिर बाद में ठंड लगना. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो. और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में,
1: एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखे, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचे, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: नमस्कार।
5: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है?
7: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी और ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
8: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
7: जी जी जी।
8: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
7: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
8: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
7: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है और इसमें एक खास बात यह है कि जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको

0: जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए, डिटैसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है क्योंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे

0: हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है, और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
0: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, अच्छा। नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुँचाएँ वहाँ पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है
1: जी।
0: इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं, इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार, बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए, और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों अभी मौसम चल रहा है जब हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो कर चुके हैं, लेकिन कई सारे किसान भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि पानी की समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमें सीधी बुआई करनी चाहिए। सीधी बुवाई क्या है, किन बातों का इस दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एस एस आचार्य सर, हैं सस्य विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू
1: सर। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि सीधी बुआई जिसे कि DSR भी कहते हैं वो क्या है।
2: अगर सीधी बुआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जो धान लगाते थे, जो धान की खेती करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले नर्सरी तैयार करते थे, फिर पौधे की रोपाई करते थे और खेत को कीचड़ युक्त करके उसके बाद रोपाई करते थे। इसमें क्या होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धान की रोपाई, ठीक। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं है, बारिश की बहुत कमी है। अगर देखा जाएगा बिहार में 40-50% अभी तक बारिश हुई है, तो इसीलिए कम पानी अगर है तो आप फील्ड को कीचड़ कैसे कीजिएगा। तो कीचड़ करने के लिए तो आपको तो पानी चाहिए, आइदर आपके पास सिंचाई का साधन हो नहीं तो बारिश हो। तो ये दोनों जब नहीं है तो आप फील्ड में अगर धान लगाना चाहते हैं तो आपका एक नया टेक्नोलॉजी जो हुआ कि सीधी बुआई, उसको आप लोग कर सकते हैं। इसको अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये है पानी को बचाएगा, मजदूरी की जो लागत है उसको घटाएगा और फिर अच्छा उपज देने के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीधी बुआई, कि मतलब बिना जो कि फील्ड प्रिपरेशन जैसे कि कीचड़ युक्त तो नहीं करके, अगर डायरेक्टली हम ट्रैक्टर चला के, जब मानसून आने से पहले हम फील्ड में ट्रैक्टर चलाएंगे, जैसे गेहूं की बुआई जैसे करते हैं सेम स्टाइल में हम लोग धान का बुआई करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि मानसून आने से पहले, जब अभी तक भी मानसून ठीक से आया नहीं अभी तक, तो जब फील्ड में हल्का सा नमी हो या नमी भी ना हो, इसी समय में हम लोग फील्ड में जुताई करेंगे, 2-3 बार जुताई करेंगे। ऐसे जुताई करेंगे कि 2-3 बार के बाद, जैसे कि अगर जब हम धान का सीड वहाँ पर बुआई कर रहे हैं तो सीड और जो मिट्टी उसके साथ, मिट्टी के साथ सीड पूरा एकदम मिल जाए, पूरा कंटेक्ट में आ जाए, और जिसके बाद जब बारिश होगा तब क्या होगा, उसमें से अंकुरण निकलेगा और उसमें से जो धान का पौधा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सीधी बुआई।
1: तो सीधी बुआई के और क्या क्या फायदे होते हैं,
2: पहले हम लोग अगर देखेंगे सीधी बुआई, पहले मैं अभी बोल चुका हूं कि खेत को पहले ठीक से तैयार करना है। जब तैयार करना है उसमें पहला जो फायदा है कि पानी कम लगेगा, कम पानी मतलब अगर आप देखिएगा कि एक फील्ड को पडलिंग या जो कीचड़ युक्त करने के लिए 200 से 250 मिलीमीटर का जो पानी है उतना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। वो पानी अगर 2-3 दिन में बारिश होगा, जोर से ढेर से बारिश होगा तब जाके हो सकता है, नहीं तो आपको उतना पानी देना पड़ेगा, तब जाके आप फील्ड को ट्रैक्टर रोटावेटर पानी भर के, उसके बाद ट्रैक्टर रोटावेटर चला के फील्ड को कीचड़ युक्त करेंगे, उसके बाद जाके रोपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको कुछ भी पानी का जरूरत ही नहीं है, सूखा में आप धान का बुआई कीजिएगा। और वहाँ पर क्या होगा ना, आप जब सूखा में बुआई कर रहे हैं तो आप जब बारिश होगा, बारिश होने के बाद आपका धान का जो अंकुरण हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत पानी को बचा लिए। और एक चीज हुआ, और एक फायदा हुआ, जो कि धान में, धान का रोपाई के लिए बहुत सारे लेबर लगते हैं। अगर देखा जाएगा 1 एकड़ में 15-20 लेबर आपको लगाना पड़ेगा धान का रोपाई के लिए, प्लस 250 मिलीमीटर रेनफॉल का या इरिगेशन चाहिए। तो ये दोनों से बच जाएगा अगर आप सीधी बुआई किए तो।
1: तो सर सीधी बुआई कब करनी चाहिए किसान भाई बहन?
2: अगर सीधी बुआई का सही समय देखें तो मानसून आने का 7-10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि अगर मानसून एक बार फुल फेज में आ गया, पानी भर जाएगा फील्ड में और सीधी बुआई नहीं हो पाएगा। इसलिए जब फील्ड सूखा है या फील्ड में आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद मेरा बारिश होने वाला है, बारिश का तो फोरकास्टिंग हो जाता है, उसी समय आप फील्ड को तैयार करके बुआई कर दीजिए। अगर 2-3 दिन ऐसे फील्ड में सूखा रहा नो प्रॉब्लम, उसमें जब बारिश होगा उसके बाद वहाँ से वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होके पौधा बड़ा होगा, और वहां पर इसीलिए सबसे बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 दिन पहले, तो जैसे कि बारिश होने के समय उसका जड़ मजबूत हो जाना चाहिए मिट्टी में, तब दैट इज द राइट टाइम।
1: जी सर, सर आप एक बार हमें विस्तार से बता दीजिए कि किस प्रकार से कैसे सीधी बुआई करनी चाहिए।
2: पहला है कि सीधी बुआई अगर देखेंगे, मैं जुताई के बारे में बोलूंगा, जुताई दो टाइप का है, एक है कन्वेंशनल जुताई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि परंपरागत जुताई, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को गेहूं के टाइम में जैसे हम लोग खेत को तैयार करते हैं उसी तरफ हम लोग धान के खेत को भी तैयार करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको बढ़िया करके रोटावेटर चला के इसको उसके बाद यहाँ पर हम लोग धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। और एक हुआ, अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो कि शून्य जुताई या जीरो टिलेज, आपको पहले आपका फील्ड में तो घास या खरपतवार तो होगा ही, तो 10 से 15 दिन पहले आपको जो ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट हो सकता है नहीं तो पैराक्वाट है, वहां पर अप्लाई कर देना है, वहां पर स्प्रे कर देना है। 15-20 दिन पहले अगर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा तो आप पूरा फील्ड घास मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा जब बारिश होगा या बारिश नहीं भी होगा तो उसी समय आप डायरेक्टली हम लोगों का जो सीड ड्रिल हम लोग बोलते हैं उसी में आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जुताई का। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिजाई का समय हम बोल दिए हैं 7 से 10 दिन पहले, इसके बाद हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे बुआई करें, तो हम लोगों का जो सीड है या बीज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे गहराई में रहना चाहिए, और उसके ऊपर एक मिट्टी थोड़ा अगर हम लोग दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो जो जड़ है, जड़ अंदर में मजबूत रहेगा, चिड़िया भी खाएगा नहीं और आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। दूसरा चीज हुआ कि हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग बोलते हैं पंक्ति में शक्ति, मतलब कि अगर हम लोग लाइन सोइंग करेंगे तो लाइन में बुआई करेंगे तो वो और अच्छा होगा, तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो लाइन से लाइन या जो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी में हम लोग अगर बुआई करेंगे, और जो अगर पौधा से पौधा देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसे रोपाई के टाइम में हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग लेते हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्पेसिंग अगर लेंगे तो वही हमारा सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि बीज, किसी भी बीज हो, बीज को हम लोग उपचार कर लेना चाहिए, बीज को हम लोग बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीज को शोधन कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम हो या थीराम हो, कैप्टन हो, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलोग्राम बीज के साथ मिला के उसके बाद अगर बुआई करेंगे तो वहाँ पर रोग आने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि धान में बहुत तरह का रोग आते हैं, तो उसको अगर हम लोग बीज को शोधन करेंगे या बीज को उपचार करेंगे तो हमारा वहां पर रोग आने का चांसेस कम रहेगा।
1: सर, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या उपाय करने चाहिए?
2: जो हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब हम लोगों का खाद, सीधी भाषा में बोलेंगे तो हम लोगों का खाद कब देना है, कितना देना है, उसके बारे में बोलेंगे तो शुरू में धान का जब बुआई करेंगे उसी समय हम लोग खाद देंगे नहीं, उसका 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद हम लोग खाद देंगे। तब क्या करेंगे कि हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, एक हेक्टर के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास। ठीक, 120 किलो नाइट्रोजन एक हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, इतना ही अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और इसमें अगर देखेंगे पूरा फास्फोरस और पोटास को हम लोग शुरू में जो कि हम लोग बोलते हैं आधार खाद, बा जब हम लोग जो 10 से 14 दिन में बोला उसी समय हम लोग दे देंगे, थोड़ा जब उसका जड़ बन गया है उसी समय हम लोग उसको देंगे। और नाइट्रोजन को अगर देखेंगे बा नेत्रजन को अगर देखेंगे 120 किलो से 60 किलो नाइट्रोजन, मतलब कि 50% को हम लोग 10 से 14 दिन के अंदर में देंगे, बाकी जो 50% बचा उसको अगेन दो भाग करेंगे, एक करेंगे जब टीलरिंग आ रहा है, जो जब उसका जो जो उसका जो कल्ले निकल रहे हैं और जो बाली जब निकल रहा है उसी समय, ये दो टाइम उसका सबसे माने पोषक तत्व के लिए संकट समय है, उसी समय अगर हम उसको आप देंगे खाद को छिड़काव करेंगे तो हमारा उपज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस पोटास को आधार खाद और 50% नाइट्रोजन, मतलब कि 60 kg नाइट्रोजन आपका आधार खाद, और जो बाकी 50% या 60 किलो बचा उसको दो भाग में भाग करके आधा देंगे कल्ले निकलने के समय और आधा देंगे बाली निकलने के समय, ऐसे अगर देंगे तो हमारा अच्छा उपज हो सकता है।
1: और अगर खरपतवार नियंत्रित करने की बात करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं?
2: ये एक फसल है, इसमें खरपतवार इतना होगा, बहुत सारे खरपतवार होंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग सीधी बुआई किए हैं, जैसे कि धान को मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए, खरपतवार को भी मौका मिला उसको जर्मिनेशन के लिए। रोपाई का एक प्लस पॉइंट है कि रोपाई के समय जब हम कीचड़ कर देते हैं पूरा फील्ड को, तब क्या होता है खरपतवार ऐसे ही नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण इसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों को 1 से 2 बार हाथ से निकाल देना है, लेबर लगा के निकाल देना है, नहीं तो मैं कुछ दवाई का बोल रहा हूँ उसको अगर आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो जो दवाई है बिस्पेरीबैक सोडियम, याद रखिएगा बिस्पेरीबैक सोडियम, जो कि बाजार में बहुत सारे नाम में आता है, एक नाम है नोमिनी गोल्ड। सो बिस्पेरीबैक सोडियम को अगर देखा जाएगा तो 1 हेक्टर के लिए बोल रहा हूँ 250 ml, 1 हेक्टर के लिए 250 ml, और याद रखिएगा 500 लीटर पानी चाहिए, 1 हेक्टर के लिए 500 से 600 लीटर तक पानी चाहिए, उसमें अगर 250 ml अगर हम देंगे तो छिड़काव करेंगे, कब छिड़काव करेंगे 20 से 25 दिन समय, जिस समय जो खरपतवार है उसका 2 से 3 लीफ स्टेज है, जो पत्ता निकला है उसी समय हम अगर अप्लाई करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण होगा। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, एक हुआ साइहालोफॉप ब्यूटाइल प्लस पेनेक्सुलाम, इसको 1000 मिलीलीटर अगर 1 एकड़ के लिए 1000 मिलीलीटर और 1 हेक्टर के लिए देखिएगा तो 2.5 लीटर अगर हम अप्लाई करेंगे वही 20 से 25 दिन में तो हमारा खरपतवार भी नियंत्रण हो सकता है। और है अगर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा खरपतवार है तो 2,4-D 1 लीटर पानी में 3 ml करके अगर हम स्प्रे करेंगे तो पूरा चौड़े पत्ती वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी सकरे पत्ती वाले मरेंगे नहीं, इसीलिए जहां पर चौड़े पत्ती वाले ज्यादा हैं वहां पर 2,4-D आप जो कि सबसे लो कॉस्ट हर्बिसाइड है उसको दे सकते हैं। और कुछ दवाई बोल रहा हूं, जैसे कि फेनोक्साप्रॉप प्लस इथॉक्सीसल्फुरन, मेटसल्फुरन मिथाइल प्लस क्लोरीमुरन इथाइल, ये सब दवाई भी दिया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है।
1: जी सर, और जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता
2: है? जल प्रबंधन देखिए, ये है धान की सीधी बुआई अगर देखेंगे, शुरू में तो पानी बारिश का पानी में ही जब हम बुआई कर दिए, बुआई के बाद 7-8 दिन के बाद जब बारिश होगा उसी पानी में हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको ये जो कल्ले निकलने के समय, जिस समय बोला कि फर्टिलाइजर देने का जो खाद देने का समय था वही समय एक है, और उसके बाद हर 7-8 दिन अंतर अंतर में पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा मैंने बारिश नहीं हुआ तब मतलब कि आपको पानी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा हम लोग पानी को ऐसे ही करेंगे कि 4 से 5 cm का पानी हर टाइम जैसे फील्ड में बने रहे, तब क्या होगा आपका घास कम निकलेगा, इसीलिए उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हमारा अच्छा उपज होगा। और एक चीज बोल रहा हूँ कि रोपाई को, रोपाई में जो 250 mm हम बोले थे कि 250 mm पानी लगता है कि कीचड़ करने के लिए, वो हर लेकिन यहाँ पर पूरा बच गया। इसीलिए यहाँ पर रोपाई के बाद जो कि ट्रांसप्लांटेड राइस में रोपाई के बाद जितना पानी लगेगा यहाँ पर भी उतना पानी लगेगा, लेकिन रोपाई और रोपाई से पहले जो पानी वह यहाँ पर बच जाएगा।
1: जी सर, और अगर हम DSR तकनीक में कुछ नवीनतम तकनीकों के बारे में बात करें तो किन तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई बहन को करना चाहिए?
2: हाँ, देखा जाएगा कि कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम तो कुछ टेक्नोलॉजी जैसे बोले कि ये सीधी बुआई एक ही न्यू टेक्नोलॉजी है, और एक है सीधी बुआई के साथ हम लोग अगर फील्ड में अगर खेत को हम लोग थोड़ा ज़्यादा उर्वर करना चाहते हैं तो, और जहाँ की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको अगर कम करना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हरी खाद या भूरी खाद। जैसे कि हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योरिंग, धैंचा एक का, धैंचा को अगर हम धान लगाने से पहले धैंचा को दो टाइप का किया जा सकता है। एक हुआ 45 दिन पहले हम धैंचा को फील्ड में छिड़काव कर देंगे, उसके बाद क्या हुआ कभी कभी कभी थोड़ा पानी मानसून पानी ये वो करके वहाँ पर वो अच्छा सा उसका उसके लिए भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और वो क्या होगा जब 45 दिन का हो जाएगा उसी समय हम उसी फील्ड में उसी धैंचा को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब कि जुताई कर देंगे, और उसमें से हमको एक अच्छा खासा नाइट्रोजन मिल सकता है। नाइट्रोजन जो कि धान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम हरी खाद के हिसाब में हम हरी खाद धैंचा को का हरी खाद वहाँ पर उगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को भी बचा सकते हैं। और एक हुआ भूरी खाद जिसको बोलते हैं ब्राउन मैनोरिंग, वो क्या हुआ कि धान जब हम लोग बुआई कर रहे हैं उसी समय धान के साथ भी और एक जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग धैंचा, धैंचा को ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, मतलब धान का बुआई भी हुआ धैंचा का ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ। उसके बाद क्या होगा तो धान वहां पर निकला और धैंचा भी निकला, तो 25 दिन के बाद, याद रखिएगा 25 दिन से ज्यादा नहीं रखिएगा, यहां पर 25 दिन के बाद हम लोग वहां पर 2,4-D स्प्रे कर देंगे। 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा पूरा जमीन से का जो धैंचा है वो धैंचा सब मर जाएगा, मतलब उसका जड़ में जो नाइट्रोजन है वो फील्ड में, उसी फील्ड में वो नाइट्रोजन आपको मिल गया। इसलिए वहां पर भी हम लोग 20 से 25 किलो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा हम लोगों को हरी खाद या भूरी खाद के हिसाब में हम लोगों को मिल जाएगा। यही एक टेक्नोलॉजी है। और एक है कि अगर पोषक तत्व में जब हम बोले थे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ और एक पोषक तत्व जो कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जो जिंक। जिंक मतलब कि जस्ता जो बोलते हैं, उसको अगर हम 20 से 25 किलो पर हेक्टर में अगर हम देंगे तो धान के लिए वो बहुत जरूरी है, और धान का प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम जिंक अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा फील्ड में तो जिंक के लिए कुछ एक रोग होता है जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, तो वह अब क्या करता है पौधा को कमजोर कर देता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है और उपज घट जाता है।
1: जी सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर कुछ बातें कहना चाहें तो क्या कहेंगे?
2: किसान भाइयों, अभी अगर देखेंगे बारिश जैसे कम हुआ है तो इसी समय आप लोग अगर धान का बुआई चाहते हैं तो आप सीधी बुआई कीजिए। तो कैसे, जैसे कि गेहूं को जैसे बुआई करने के लिए जैसे ही फील्ड को प्रिपेयर कर रहे थे उसी टाइप का आपको खेत को बनाना है, उसके बाद लाइन सोइंग करके 20 सेंटीमीटर में लाइन सोइंग करके अगर आप धान का बुआई कीजिएगा तो भी आपका किया जा सकता है।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और जिन तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में सर ने बताया, उन सारी बातों का आप ध्यान रखें और धान की सीधी बुआई करके भी आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके, थैंक यू।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले।
आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही, लाभ कई।

0: माँ कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिम हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दे। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहे 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने। और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को
तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हमारी स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे

0: सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो, तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको तीन बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो, तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में चार चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे

0: के साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
1: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं, और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
1: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी जी।
1: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है, और पछेती फूलगोभी भी आती है। अच्छा। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
0: अच्छा।
1: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जायंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल वन है, पूसा स्नोबॉल टू है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं, और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
1: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं, और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं, और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके खेत के हिसाब से, कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
1: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम एक हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूलगोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी दो तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा,
1: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष,
1: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
1: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पिछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए, और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए, और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना जरूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा,
1: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
0: मतलब
1: तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो
1: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
1: बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएँ फूल गोभी के लिए।
1: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए जैसे हमने तीन भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए। और फॉस्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
0: अच्छा
1: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं गोभी की फसल में, अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फॉस्फोरस के लिए, जो हम फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फोट से फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन। बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
0: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
1: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी थी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलिन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण मिल हो सकता है।
0: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
1: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
0: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
1: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
0: बना रहता है
1: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहरी में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
0: जी,
1: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
0: मतलब
1: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
0: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। तो बोरॉन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा,
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता है। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विपटेल।
0: अच्छा,
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विपटेल होता है एक मॉलिब्डेनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विपटेल?
1: विपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
0: अच्छा,
1: तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा,
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा,
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
1: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें।
0: अच्छा।
1: या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौधे की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं, तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
6: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
7: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
6: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
7: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
6: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
7: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीट प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
6: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
7: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
6: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
7: बिल्कुल।
6: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
7: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पर जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
6: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
7: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
6: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद आपको भी।
6: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।

0: जरूरी काम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x 12 मीटर की दूरी रखे अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
0: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
2: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
3: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
4: नाना जी।
5: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
4: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
6: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
4: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
5: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
6: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
5: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
4: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा, तो ये बात है।

0: बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
1: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
2: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ, पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सकें, क्योंकि उन्हें पालने में लागत ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो, और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे, और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें। आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के उपाय। जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है, उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है, और उनके रोगों का उपचार कैसे करें उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीमार बकरी की जहाँ तक बात आती है तो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हम आदि तो नहीं होते हैं कि हम जैसे मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य कह देता है कि भाई मुझे बुखार लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे है, लेकिन बकरी बोल नहीं पाते हैं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये बकरी बीमार है और ये बकरी स्वस्थ है?
7: देखिए, पशुपालकों के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे ही आप पशु की बात करते हैं, उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, आप खाना लगाते हैं, पानी देते हैं, उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुंह उधर सूख जाएगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा। आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नजर आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था। जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड करते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
6: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं। इसके अलावे उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
7: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंडा हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीजन में, ठंडे के सीजन में, और नाक से पानी आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन, ठंडी के दिनों में अधिकांश बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी बीमारी है, आप उसको शुरू से उस पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फूट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी, तो उसको फूट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में। जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा। और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सबसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रत्येक 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
6: मतलब जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा, तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावे भी कुछ और?
7: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, एस्केरिस है, एक हिमोंकस कंटॉर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है। तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डीवर्मिंग कीजिए। प्रत्येक 3 से 4 महीने पे इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप उसको डीवर्मिंग कराएं नियमित रूप से। पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डीवर्मिंग से बचा जा सकता है।
6: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
7: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप अब चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला, बरसीम, काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा। और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसके 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीजन में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप्टीडेज या टिनिडाजोल के नाम से दवा आती है, तो उस दवा को, टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेबलॉन पाउडर आता है, नेबलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे, चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरापी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
6: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
7: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, घर के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी। तो ठंड हवा से बचाएं, डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंड हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताज़ी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
6: बाहर जानी चाहिए
7: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज़्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर है पर्दा लगा दे, लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही हैं, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
7: देखिए, प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड। आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेट उंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फट गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेट उंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं। उसकी दवा आती है टॉपिक्योर, हिमैक्स आदि, वो आप सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप ज़रूर अपने पशु को दिखवा लें, जांच करवा लें। और अभी जो है, कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है। ठंडी से पहले ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जाना चाहिए?
7: देखिए, फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया कहीं, हाँ, खून बह रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए, अच्छा, बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को तो मीठा सोडा खिला सकते हैं, मीठा सोडा खिलाएंगे, आपको जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए, और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
6: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
7: देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
6: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते हैं,
7: बीमार रहते हैं, हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए, तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आसातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुंच पाया, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपये का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप यदि 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
6: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं लेकर आऊँगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
8: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक से 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCH UP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल 0 हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में जो भी हमने शुरू में जिक्र किया उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है, क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति आए तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग

0: इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो

0: जो को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
0: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि 90.8 FM। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं, तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
6: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
8: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
6: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
8: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखरा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार एक बार निकोनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखरा रोग लगता है। पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में एक बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इसे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं
6: जी। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
8: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी है JS335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धवा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वेराइटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वेराइटी JH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वेराइटी JH95-60 है, इस वेराइटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वेराइटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जड़ सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वेरायटी प्रताप राज 24 है, ये भी काफ़ी अच्छी वेरायटी है और मध्यम ऊंचाई की ये किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
6: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्य क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
8: ये सस्य क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जरे को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए। तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 ग्राम किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुक्त तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बखरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उथली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूलोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को प्रभावित बीजों को डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
6: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
8: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोप्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग के प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजीम 50WP या थाइफेनेट मिथाइल 70WP 0.05 से 0.1 प्रतिशत से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है, इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें, इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
6: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि
9: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
9: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर, आप हैं KVK सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो। अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें, उसको सही दुरुस्त करवा लें। दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें, पानी जमा नहीं हो, ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग, आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप, उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें, उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें।
3: सर, ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए। अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
4: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप जरूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए। चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा किए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
3: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
4: देखिए, बस अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंह पका रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये ज़रूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अकरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपनी पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है, तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी डिटर्जेंट साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें। और पोटासियम परमैंगनेट, जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनेल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा, जो अभी जो मौसम आता है, देखिए कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो आप ये कोशिश करें, और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD, HS, BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा, जो खास करके जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात ख़त्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
3: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
4: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हों या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हों, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें, और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रिन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोका नठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
3: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में ज़रूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें, बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
4: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से, तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें, और कम से कम 1 घंटे के बाद, बस जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं, जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का 1/10 भाग 1 दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का 1/10 भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर, काफ़ी खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप विद बच्चों, जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है, उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में, तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें आप। अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है, FMDHS BQ, इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की, भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसका, इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
3: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का, और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: See you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम
5: पत्थर का सूप।
6: कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी।
7: बहुत बारिश पड़ रही है, कपड़े भी भीग गए, कहाँ जाऊँ, इतनी रात है। सामने मकान है, करीब जाकर देखता हूँ। वाह, ये तो शानदार मकान है, क्या करूँ। हिम्मत करके अंदर चला ही जाता हूँ। चलो चलो।
6: वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया।
7: अरे यहाँ कोई रहता है? अरे यहाँ कोई रहता है?
6: दरवाजा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा,
8: जी कहिए, यह बावर्ची खाना है, आपको मुझसे क्या काम है?
7: जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ।
8: मुझे भी बहुत काम है, अभी मुझे खाना बनाना है, मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ।
7: देखिए मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो, देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर कांप रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ, बस मैं थोड़ी देर ही बैठूंगा।
8: ठीक है ठीक है, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन देखो मेरा वक्त खराब मत करो, चुपचाप बैठो, चलो।
7: जी जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इधर से भी सुखा लूं, उधर से भी सुखा लूं।
6: वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई।
7: हाँ, क्या करूं, कपड़े तो सूख गए, मेरी तो भूख और बढ़ गई है, कोई तरकीब लगानी होगी।
8: भाई
7: क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ?
8: अच्छा?
7: मैं बहुत अच्छा सूप तैयार कर सकता हूँ, इसमें खर्च भी कम होता है, और इसे पत्थर से तैयार करते हैं।
8: क्या पत्थर का सूप? भाई मैंने तो ऐसे सूप का नाम कभी नहीं सुना। भाई सुनो, तुम कैसे बनाते हो ये सूप?
7: अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना।
8: तो ठीक है, ठहरो, ये लो हांडी और ये लो पानी।
6: बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया।
7: बस बस बस बस बस, अब ये रहा पत्थर, अब इसे हांडी में डाल दो।
8: अच्छा अच्छा,
7: डाल दो डाल दो डाल दो, डाल दिया। पानी चखूं? वाह, बड़ा मजेदार सूप है। मैं जरा नमक पड़ेगा। भाई तुम तो जानती हो, नमक तो हर खाने में होना जरूरी है।
8: जरूर जरूर।
7: ये मेज पर सब्जी रखी है ना?
8: हाँ हाँ, सब्जी है।
7: इसे भी डाल देता हूँ।
8: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, डाल दो डाल दो।
7: बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है। बस जरा सा लहसुन और प्याज पड़ेगा।
8: तुम इसे देखते रहो।
7: ठीक है,
8: देखो देखो, कहीं ज्यादा ना पक जाए।
7: ना, ना, ना।
8: मैं अभी प्याज और लहसुन लेकर आता हूँ।
7: ले आ, ले आ, ले आ।
8: ये लो, ले आ। दोनों चीजें
7: लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ ला, ला, ला, ला। डाल देता हूँ इसमें। बस अभी हुआ जाता है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सूप तैयार हुआ। बस जरा इसे चलाने की जरूरत है।
8: चलाओ चलाओ।
6: बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था। वो सोच रहा था,
8: अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और सबको हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे।
7: ए भाई, बावर्ची भाई, भाई सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसमें डालकर सूप को गाढ़ा करूं।

0: वरना मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ऐसा सूप चखा भी नहीं होगा।
1: ना भाई ना, मैं कहां चखता। और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है। मगर सुनो, अब क्या कसर रह गई इसमें।
0: अरे बावर्ची भाई, इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे।
1: बादशाह को? ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों है। ठहरो, ये लो,
0: ये दूध डाला हांडी में। घुमाओ रे घुमाओ, चलाओ रे चलाओ। वाह वाह, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है।
1: देखो, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ।
2: हाँ हाँ, बताओ।
0: है
2: क्या?
0: बस जरा से सब्र की जरूरत है। तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है। अरे अब तो तमाम रसोई में हांडी की खुशबू फैल रही है,
1: और वो भी पत्थर के सूप की।
0: अरे ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ।
1: अच्छा दिखाओ।
0: मैं हांडी में से ये पत्थर निकाल रहा हूँ। ये पत्थर अभी ज्यों का त्यों मौजूद है।
1: हैं? ये देखो। वाह, ये तो कमाल हो गया।
0: चलो मिल के आधा आधा सूप पियेंगे।
1: हाँ, खूब पियेंगे। वाह, पत्थर का सूप।
3: बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया। दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया।
1: पत्थर का सूप,
0: पत्थर का सूप। पत्थर का सूप।
4: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार शमाइला परवेज और नीरज शर्मा, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई

0: टीका नहीं लगा है।
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
5: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
5: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात तो पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉडबैंड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं, BBF से, ब्रॉडबैंड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है। हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट। क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया। 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
3: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
5: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। 2 से 3 बार जुताई करके पटा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहां पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहां पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ बीबीएफ पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
3: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
5: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7। इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियां हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है। हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार। साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्य की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
3: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
5: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है। या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10-11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20-25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22-25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता है। बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45-50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को दो भाग में बांटना है, पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है। चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
3: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
5: मिलेगा
3: जा रहा है, जी, तो ये भी काफी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों इस मौसम में आप जरूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आए कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: See you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: See you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा, थैंक यू। नमस्कार सभी को।
3: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
5: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
3: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
5: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज ये कि अगर आप मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो डीएसआर के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीजें जो है वो डीएसआर के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज, डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम डीएसआर करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। डीएसआर में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे, तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होते हैं हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी, आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उससे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब दो लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन एक हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस दो स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और और दूसरी चीज ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके दो हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
3: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
5: अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपकी फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
3: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं से इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के सात साल आठ साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले, या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं आपने गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है, सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हम हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, ना कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं, और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हों 7 साल 8 साल 10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2 से 3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है, और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
0: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस कम होनी चाहिए,
1: मतलब कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए, इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की बात, तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
1: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सभी किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं, तो इसमें मालदा, जरदालू, और गुलाब खास, कृष्ण भोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है, तो हम हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो, और तो वैसे वृक्षों का, वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते। इसलिए उन जगहों में जहाँ के गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या एक दो पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीज़ों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप, आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और अपने स्थान विशेष, जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं और 6-7 साल तक आप अगर अपने मेहनत को यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं ताकि हम 6-7 साल बाद पछताएं नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम, पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे, जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो लगाने के पहले 2 महीने, 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी एक नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, उसे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें, और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 kg कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg और 4 से 5 kg आप नीम या

0: मिट्टी रहे, उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे तब फिर क्या है, बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है, अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा, जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे, उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो उसमें जड़ के जलने की समस्या हो रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आप एक महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3-6 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया, उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी दो बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छे तरह से मिट्टी बांटने दें, और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा, और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
1: तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्र, मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को?
0: देखिए, पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक, कुछ हमारे कुछ एरिया में जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है, वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे, सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है, और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, उसको डालें, और फ्यूराडोन मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें, जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें, और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
1: अच्छा,
0: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं, क्योंकि उनका मौसमी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी, अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद, जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडी के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं, और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद और उर्वरक देना शुरू करें। 1 साल के पौधे में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताऊंगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप बहुत सारे उर्वरक यूज कर सकते हैं, और सभी उर्वरक में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए मैं किसी एक उर्वरक का नाम नहीं लूंगी, मैं उनके तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उनके मात्रा के बारे में बताऊंगी। तो पहले साल में एक पौधे में आपको लगभग 60-70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और 30-40 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से 40-50 ग्राम या 40-60 ग्राम प्रति वर्ष 1 साल के पौधे में पोटास की ज़रूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं, पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है नाइट्रोजन की मात्रा 700-800 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400-600 ग्राम, और पोटास की मात्रा जो है वो 600-800 ग्राम प्रति पौधे होती है। और ये निर्भर करता है, अगर आपकी मिट्टी जो है

0: वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे। अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटाश की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे और ये उर्वरक आप दो भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
1: कहने का मतलब है कि जब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो हमने कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएं। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
0: देखिए, पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसको उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
1: जी जी।
0: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए, 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो वो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चित करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और
1: फल अच्छे
0: होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
0: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें। अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें ताकि उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण सौ समय करें ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
1: तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा, इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देखरेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी।
1: और आप सभी को मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: रहो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज जो उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे अरहर दाल के बारे में, इसके प्रभेदों का चयन हम कैसे करें, कौन सा प्रभेद हम लें, सारी जानकारी आज हमारे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रफत सुल्ताना, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच।
2: मैं बता दूं सारे हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लान ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले तो दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो अरहर की खेती का क्या महत्व है?
3: थैंक यू अनु सो मच। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें ना सिर्फ इंसान और पशुओं के पोषण के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि जिस ज़मीन पर इन्हें उगाया जाता है उसे भी ये आगामी फसलों के लिए उपजाऊ बना देती है। दलहन की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर न सिर्फ अपना पोषण करता है, जिस मिट्टी में ये दलहनी फसलों को लगाया जाता है उसमें भी ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है
2: जी।
3: इसलिए दलहन की खेती का को हम सहजीवी विधि से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना भी कहा जाता है।
2: अच्छा,
3: अब हम सभी जानते हैं कि दलहन फसलें जिस मिट्टी में लगाई जाती है उसके लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, बट हमारे शरीर के लिए भी आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है। यदि मानव शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन न मिले तो हमारे शरीर की मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर के दाल को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, इसलिए अरहर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी थाली में
2: जी।
3: अरहर की दाल में लगभग 21-22% तक प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की बाजारी भाव भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान लोग काफ़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। पर चिंताजनक बात यह है कि बिहार में दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है
2: जी।
3: जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है।
2: बिल्कुल,
3: आज लगभग सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती बिहार में होती है। इसमें अगर आप अरहर की बात करें तो ये मात्र 27,000 हेक्टेयर में इसे लगाया जाता है।
2: अच्छा,
3: अगर हमारे देश में दलहनी फसलों और दूसरे दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में लगाया जाता है वो मूंग है, वो 1,71,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। उसके बाद मसूर आता है जो लगभग 1,45,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। फिर जाकर के आपका चना आता है जो लगभग 67,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, पर अरहर सिर्फ 27,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, जो कि अगर रकबा के हिसाब से सोचा जाए तो ये चौथे नंबर पे आता है
2: जी
3: बिहार में। और अगर आप ये जान करके बहुत आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें अरहर की, तो पूरे देश में इतनी उत्पादकता नहीं जितने कि हमारे बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की जो उत्पादकता है अरहर की वो 1,639 केजी प्रति हेक्टेयर है
2: जी,
3: जब के जो हमारे जो नेशनल एवरेज है उसकी जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो लगभग 776 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसके बावजूद भी हम बहुत ही कम एरिया में ही लगा पाते हैं,
2: बहुत ही कम क्षेत्रफल में जी।
3: तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ज़मीन को जो अरहर होता है ज़मीन को से पोषण लेकर उसे वापस लौटाने के लिहाज से काफ़ी इसका कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए है कि जो अरहर का जो पौधा होता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करता है। एक अगर एक सीज़न में आप अरहर लगाते हैं एक हेक्टेयर में लगाते हैं तो वो 40 केजी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है जीवाणुओं को द्वारा, क्योंकि इसकी जो जड़ जो होती है ना वो मूसलाधार जड़ कहलाता है। ये बहुत लंबी होती है, टैप रूट इंग्लिश में इसे कहते हैं। अच्छा। जिससे इस जिससे जिस मिट्टी पे भी इसे लगाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी स्थिरीकरण हो जाता है, फिक्सेशन होता है और वो बहुत लाभदायक होता है।
2: तो यहाँ पर अरहर की खेती के महत्व के बारे में आपने जाना कि कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए अरहर और हमारे थाली में इसकी क्या महत्ता है, सारी चीज़ें मैम ने आपको बताई हैं। अब खेती की ओर बढ़ते हैं तो मैम भूमि का चयन कैसा होना चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों को?
3: देखिए जैसे हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती है वो जो है उसमें अरहर एक खरीफ में लगाया जाता है। खरीफ का मतलब है कि ये जब बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है
2: जी।
3: इसलिए इसका जो है ना आप जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको भूमि का चयन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
2: जी।
3: ये थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में अगर मिट्टी में जल भराव रहेगा तो अरहर की खेती अच्छे से अरहर की खेती बर्बाद ही हो जाएगी। अच्छे से क्या बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बहुत इसकी भूमि के चयन कैसे करें उसकी जानकारी मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ अभी यहाँ पे। तो अरहर की खेती हर तरह की मिट्टी में वैसे की जा सकती है, लेकिन लवणीय या क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती संभव नहीं है। अलबत्ता अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी, अगर आप मीडियम ड्यूरेशन और अल्प अवधि वाली अरहर लगाते हैं तो उसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी जो बिहार में ज़्यादातर लगती है वो होती है दीर्घ अवधि वाली, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाई जाती है यहाँ पे। अच्छा। तो उसके लिए जो है आपको अगर काली मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अच्छा, अगर वो वैसे खेत हो तो उसका चयन करें
2: काली मिट्टी वाली।
3: अरहर की खेती में पानी का ठहराव हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से अरहर के पौधों में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाएगी तथा उपजाव कम होने की आशंका रहती है। साथ ही फसल पर कई बीमारियां और कीटों का हमला बढ़ने का जोखिम होता है। जल भराव में वाटर लॉगिंग कंडीशन एक कहते हैं, उसमें एक जो है फंगस जो होता है वो है फाइटोफ्थोरा, उसका इन्फेस्टेशन मतलब उसकी जो वो बीमारी लग जाती है। जल भराव भी है और फाइटोफ्थोरा है तो आपका जो पौधा है वो 80 से 100% तक वो आपकी क्षति होगी। अरहर के खेत में मई, आप तैयारी के लिए अरहर के खेत में मई जून की गर्मियों में 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। बुआई हल्के पीछे कुंड लगाकर करनी चाहिए। सख्त मिट्टी और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में अरहर की के पौधे का तना फाइटोफ्थोरा बीमारी के चपेट में आकर गलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। इससे स्वास्थ्य पौधे का घनत्व बहुत कम हो जाता है और पैदावार काफ़ी घट जाता है
2: जी। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए
3: इसके लिए, जैसे अगर जहाँ पर भी जल भराव का समस्या है तो वहाँ जल भराव वाले इलाके में अरहर की बुआई के वक्त इसके कतारों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बनाकर उसे अरहर की बुआई करना चाहिए।
2: अच्छा।
3: उससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। मेड़ों पे अरहर की बुआई करने से सिंचाई में 25 से 30% पानी भी बचता है, क्योंकि आपने यहाँ बिहार में अब देखे होंगे कि जो धान के किसान हैं वो मेड़ों पर अरहर की खेती करते हैं, उससे जो पानी जो धान में रहता है वो आपको साथ साथ अरहर में मिल जाता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी अरहर को मजबूत बनाते हैं और अरहर की काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे मेड़ों पे होती है। अरहर की खेती के 3 तरीके बहुत ही प्रचलित हैं और हर एक के लिए पौधे और कतारों के बीच फासला रखने के लिए अलग अलग दूरियाँ अपनाने की सलाह दी जाती है।
2: तो मैम ये तीन तरीके कौन कौन से हैं ये जानना चाहेंगे हम।
3: देखिए देश में अरहर की खेती जैसे तीन तरीके से प्रचलित हैं, उसमें से कुछ अगेती अरहर होती हैं, कुछ मध्य अवधि वाली अरहर की प्रजाति होती है, कुछ दीर्घकालिक अरहर की प्रजाति होती है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगेती अगर अरहर लगाते हैं, जो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, वो अगर लगाते हैं तो इसकी जो ये जो प्रजाति है ये मध्य और दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा है, इसका चलन है। यहाँ पर तो बिहार में बहुत ही कम है अल्प अवधि वाली। तो इसमें क्या है कि आप इसको आप 15 जून तक बुआई कर दीजिए
2: जी।
3: इसकी बुआई जो है आप 15 जून तक कर दीजिए, और जबकि मध्य और दीर्घकालिक जो है उसकी बुआई जो है आप 1 से लेकर 31 जुलाई के बाद कीजिए। तो एक तो इसमें बुआई का टाइम हो गया। इसमें ये भी है कि अगर आपने जैसे आपका जो अल्प अवधि वाली जो है उसकी जो पंक्ति से पंक्ति जो दूरी होती है उसको भी कम रखने की ज़रूरत है, वो लगभग आप 60 सेंटीमीटर रखिए। और जबकि जो जो दीर्घकालिक अवधि वाली प्रजातियां हैं उसके लिए आप 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी रखिए, तो आपका आपकी फसल अच्छी होगी। और ये आप 31 जुलाई तक आप आराम से लगा सकते हैं।
2: और बात करते हैं अपने बिहार राज्य की, तो अरहर की कौन कौन सी प्रजातियां हमारे राज्य यानी बिहार के लिए सही है और उनमें सबसे अच्छा कौन सा है?
3: देखिए जैसे बिहार में खरीफ में लगाया जाता है अरहर, और मगर लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग है
2: जी।
3: जो 1 से 31 जुलाई के बीच में लगाने वाली अरहर है जो अच्छी किस्म है वो है बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और मारवीय अरहर 13
2: जी।
3: जो बहार जो है वो भागलपुर के लिए उपयुक्त है, भागलपुर क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। इसकी उपज जो होती है 25 से 23 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 265 से 275 है केजी, 275 दिन है। पूसा 9 जो है वो आपका 250 से 260 दिनों की फसल है जी। और ये 20 से 25 हेक्टेयर उपज देती है, और ये भी भागलपुर और उत्तरी बिहार के लिए उपयुक्त है। एक है नरेंद्र अरहर 1 जो कि 260 से 270 दिनों में यानी कि 9 महीने में पक्के तैयार हो जाती है, आप 31 जुलाई तक लगाइए। और 20 से 25 इसमें भी केजी क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है
2: जी।
3: इसमें रोग रोधी क्षमता भी है, मिश्रित खेती हेतु उत्तरी बिहार के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। मालवीय अरहर 13 आपने देखा होगा कि मुंगेर क्षेत्र में लगाया जाता है, और ये जो है थोड़ी इससे कम है, 8 महीने की फसल है। और इसको आप इसको भी आप 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लगा देंगे, आपको लाभ होगा। जैसे ही अब बारिश आती है, जैसे ही मानसून शुरू होता है, आप पर्याप्त मॉइस्चर हो जाए खेत में, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये मुंगेर एवं भागलपुर दोनों ज़िलों के लिए उपयुक्त है। फिर आपका आता है दो जो हमने कहा है कि अल्प अवधि की, वो उसको 1 जून से लेकर 15 जून तक लगाइए। अगर ये ऐसे किसान लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश उस वक्त तक नहीं आती है, तो जिनके पास सिंचाई हो और जिनकी भूमि ऊंची हो, जहाँ पे जल निकास की पूरी तरह जल निकासी का पूरा व्यवस्था हो, आप वहाँ पर लगाइए। और उसमें से एक PA 291 है, ये पंतनगर की वैरायटी है।
2: अच्छा।
3: जो कि हमारे बिहार में बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये जो है अभी नई है, क्योंकि अभी जो भी भारत सरकार का रिकमेंडेशन है कि आप 10 साल से कम अवधि वाले ही वैरायटी को का चयन करें तो ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये PA 291 ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब अल्प अवधि की है, और ये उकठा रोग जो होता है विल्ट, वो उकठा रोग से प्रतिरोधी है।
2: अच्छा।
3: और एक और जो है, जो अभी हम लोगों का जो एक सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
2: जी।
3: उसमें IPA 203 ये IIPR कानपुर की वैरायटी जो कि हमारे ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंडेड है, इसमें बिहार भी आता है। तो ये जो है 280 दिनों का ये है, आप अप्रैल में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी मतलब कटाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी के जो हम एक खूबी बताएंगे वो ये है कि ये जो IPA 203 है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर अरहर की जो सबसे से समस्या जो आती है लंबी अवधि वाली में, कि इसमें फूल झड़ने की समस्या दिसंबर में हो जाती है, जब भी टेम्परेचर लो होता है तो फूल झड़ जाते हैं, इससे किसान बहुत परेशान हो जाता है और कई किसान तो छोड़ भी देते हैं कि भाई अब इसके बाद फली आएगी कि नहीं आएगी, अब किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए ये जो किसान ऐसा सोचते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, क्योंकि इसमें जो पहली बार जो फूल आती है ना वही आती है आपका जनवरी में।
2: अच्छा,
3: तो जो जो जो पहले जो एक बार फूल झड़ने के बाद दोबारा फूल से जो भी होता है उससे तो लॉस तो होता ही है ना।
2: बिल्कुल,
3: तो लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो बहुत ही कम होता
2: हो जाता है,
3: कम होता है। और इसकी जो उपज क्षमता भी है काफ़ी अच्छी है। और IPA 291 की जो बात कर रहे थे वो अल्प अवधि की है, 150 से 161 दिनों की प्रजाति है
2: जी।
3: एक और है जो कि हम लोग सितंबर अरहर के बोलते हैं, उसमें आप पूसा 9 को लगा सकते हैं, शरद भी है पर शरद की आपको बीज मिलेगी नहीं, बिहार के लिए रिकमेंडेड है पर वो बीज उसकी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर हाँ, पूसा 9 जो है, पूसा 9 को आप सितंबर में लगा करके भी आप कम से कम 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। ये आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
2: तो श्रोताओं, आज यहाँ पर पूरी जानकारी मिली है आपको डॉक्टर रफत सुल्ताना मैम से, अरहर में प्रभेदों का चयन आपको कौन कौन सा करना चाहिए। खास तौर पर मैम ने बिहार राज्य के बारे में बताया और अपने शहर भागलपुर और भी आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया कि आप वहाँ पर कौन से प्रभेद को लगा सकते हैं, कौन सा प्रभेद आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होगा, आप कुछ जानने को मिला होगा आपको और कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपना और अपनी खेती बाड़ी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। खेती बाड़ी हो या फिर हम अपनी बात करें, दोनों ही मिट्टी से जुड़े होते हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर खाद्य सुरक्षा तक हर क्षेत्र में मिट्टी का किसी न किसी तरीके से योगदान होता ही है और यही कारण है कि हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है मिट्टी के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और मिट्टी के कटाव, प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी और उर्वरता घटने जैसी चुनौतियों पर ध्यान खींचना। तो आइए आज हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। अभी के वक्त में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार की एक अहम योजना है। इसके तहत होता यह है कि किसानों को उनके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी वाला एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड बताता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किसकी कमी है और कौन सा तत्व आपकी मिट्टी में जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तो ये कार्ड किसानों को ये भी बताता है कि फसल के अनुसार कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कौन से पोषक तत्व की पूर्ति की जरूरत है और साथ ही मिट्टी का pH मान और लवणता स्तर भी बताता है। इससे किसानों को बहुत सहूलियत होती है, उन्हें समझ आता है कि वो किस तरीके से खाद और उर्वरक का सही उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बिना जरूरत के रसायनों के प्रयोग में कमी आती है, जिससे मिट्टी की सेहत अच्छी हो जाती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये कार्ड किसानों की खेती के लागत को घटाने में और पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अब तक हमने जान लिया है कि मृदा हेल्थ कार्ड क्या है। ये किसानों को उनकी मिट्टी की पूरी पूरी जानकारी देता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कार्ड आपको मिलेगा कैसे। तो आइए जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड आपको कैसे मिलेगा। मृदा हेल्थ कार्ड पाने की एक प्रक्रिया होती है। ये तरीका बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो कृषि विभाग यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK की टीम आपके खेत से मिट्टी का सैंपल लेती है। इसके बाद ये सैंपल मान्यता प्राप्त लैब में भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक आपके खेत की मिट्टी के अलग अलग तत्वों की जांच करते हैं। जब ये जांच पूरी हो जाती है तो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाई बहन ये कार्ड दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप किसान पोर्टल पर लॉगिन करें, जिसके बाद आप अपना सॉयल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन तरीके में आपको विभाग के द्वारा इसे सीधे प्रदान किया जाता है, यानी कि आप विभाग से जाकर अपना सॉयल हेल्थ कार्ड मांग सकते हैं, अगर आपने खेत की मिट्टी का सैंपल विभाग को दिया है तो। और जब आपकी मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनता है तो इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, ताकि किसानों को सटीक और उपयोगी जानकारी दी जा सके। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। मृदा हेल्थ कार्ड आपके खेती की योजना बनाने में एक रोड मैप की तरह काम करती है, और इसमें मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियां हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपके कार्ड पर लिखा होगा आपका नाम, गांव और खेत की लोकेशन। इसके बाद मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा, जिसमें कि NPK, जिंक और सल्फर आदि पोषक तत्वों की मात्रा उस पर लिखी होगी। वही मिट्टी के pH मान भी लिखे होंगे, यानी कि मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय स्थिति का भी वहां पर जिक्र होगा। और इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि आपके खेत की मिट्टी की लवणता क्या है, यानी कि EC वैल्यू क्या है। ये सारी बातें उसमें तो लिखी होती है, साथ ही ये भी लिखा होता है कि आपको आपके खेत में कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है, जिससे आपको अधिक पैदावार मिल सके। और इसके साथ ही आप अगर जैविक खेती के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आपके कार्ड में ये भी लिखा मिलेगा कि आपके खेत की मिट्टी जैविक खेती के लिए बेहतर है या फिर रासायनिक खेती के लिए बेहतर है। इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या है और इसके सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं। और जब ये सारी जानकारी किसान भाई बहनों को मिल जाती है तो उनके लिए ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि उनके खेत की मिट्टी के लिए कौन सी फसल बेहतर है और इसे फसल की उत्पादन में सुधार देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप किन तरीकों से मृदा हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और निशुल्क है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, या तो फिर किसान सीधे ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से एक टीम आपकी खेत की मिट्टी का सैंपल लेने आएगी। KVK की वैज्ञानिक टीम खेत से मिट्टी लेकर उसे लैब में भेजती है और एक रिपोर्ट तैयार करवाती है। अगर आपके पास कृषि विभाग कार्यालय या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जाने का वक्त नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसान भाई बहन घर बैठे ऑनलाइन भी अपना कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इसके लिए वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in। इस पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा और सैंपल देने के बाद विभाग समय समय पर अपडेट कर देता है और रिपोर्ट तैयार होते ही किसान को एक सूचना मिल जाती है। इसके बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड यानी कि मृदा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे विभाग से जाकर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड से किसानों के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी की सटीक जानकारी मिल गई है। वहीं जब मिट्टी की सटीक और पूरी जानकारी मिल जाती है तो उर्वरक का सही और कम उपयोग होता है, जिससे खेती की लागत घट जाती है और मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इससे फसल चयन में भी आपको मदद मिलती है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अगर आपके खेत की मिट्टी जैविक खेती के लिए उपयोगी नहीं है तो आपको बता दिया जाता है कि आपको रासायनिक खेती करना चाहिए। कई किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि मिट्टी का pH क्या होता है और ये जानना क्यों जरूरी है। मिट्टी का pH बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय। pH सही होने से फसल पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाती है। अगर आपके खेत में पोषक तत्व तो है लेकिन pH अगर सही नहीं है तो आपके खेत में फसल अच्छे नहीं होंगे, इसलिए मिट्टी का pH जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने मृदा हेल्थ कार्ड बनवा लिया है तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इसे फिर बनवाने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आम तौर पर मिट्टी का सैंपल हर 2 साल में लिया जाता है। इसके लिए मृदा हेल्थ कार्ड को हर 2 साल बाद दोबारा अपडेट करवाना चाहिए। आपको मृदा हेल्थ कार्ड में सूक्ष्म तत्वों जैसे कि जिंक, सल्फर की जानकारी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, इसलिए मृदा हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास अभी तक मृदा हेल्थ कार्ड नहीं है तो आप मृदा हेल्थ कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जल्दी से बनवा लें। इससे आपको और आपके फसल को बहुत फायदा होता है। ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मज़ेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफ़ी फास्ट चीज़ें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं, और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हों, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीज़ें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाएं। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक
अच्छा माहौल बनाए जहाँ पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे और एक अच्छी तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना है। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर ले, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में, ग्रुप स्टडी में, आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफी अलग होता है, वो चीजों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं, आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिवीजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है, जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ,
कोई भी यहाँ पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं, तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा, तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए, तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद

या तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसको जानने का समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं, तो आप अकेले पढ़िए। लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं, तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी। आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूज़न दूर किया, या फिर किसी और के कन्फ्यूज़न को आपने दूर किया, तो फिर आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीजों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहां पर आप अपने जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं।

0: जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर आप सभी के बीच आ चुके हैं। और खेती बाड़ी की बात करें तो आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोज कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों की सहायता के लिए, उनकी सहूलियत के लिए। बात करते हैं खेतों पर काम करने की, तो पहले बैल से हल से जुताई की जाती थी, खरपतवार जो है उनकी छटाई की जाती थी, और उसके बाद ट्रैक्टर से, जी हाँ ट्रैक्टर से किसान भाई खेतों की जुताई करने लगे और उसे खेतों के काम में उपयोग करने लगे। और उसके बाद विकसित हुआ है ऑटोमेटिक ट्रैक्टर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर आदित्य, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: सर सबसे पहले तो कृषि में ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर का महत्व कितना है, कैसे अलग है ये जो अलग जो जनरल जो ट्रैक्टर होते हैं उनसे कैसे अलग है?
3: बिल्कुल, एक्चुअली जब कृषि में ऑटोमेटिक ट्रैक्टर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार जो भारत जैसे देश में कृषि श्रमिकों की लगातार कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि किसान की एक आम शिकायत है कि जब वो ट्रैक्टर पे बहुत देर तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो उनको पीठ दर्द की शिकायत होती
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि ट्रैक्टर पलट जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर पलट जाता होगा। तो ये सब चीज़ को उससे बचने के लिए ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर एक बहुत अच्छा समाधान है, जिसमें कि ना तो किसान को खुद उस पर काम करना पड़ेगा, ना ही इसमें वो ट्रैक्टर को पलटने की समस्या है, और जो कृषि श्रमिकों की जो लगातार कमी झेल रहा है कृषि, और युवा भी कृषि से बाहर निकलते जा रहे हैं
2: जी।
3: तो इससे भी ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक ट्रैक्टर के रूप में आ सकता
2: जी। अभी के जनरेशन की बात करें तो पहले लगता है जैसे कि हमने कहानियों में सुना होगा कि लोग जो हैं हल से खेती करते थे, अब धीरे धीरे जो है खेती में भी डेवलप होने लगे हैं सारे मशीन। तो बात करते हैं अब इसके इतिहास के बारे में, डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं।
3: बिल्कुल, इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 2012 में एक कंपनी थी जिसका नाम था ऑटोनोमस ट्रैक्टर कॉरपोरेशन।
2: अच्छा।
3: ये एक कंपनी थी जिसने एक पहला मॉडल निकाला था, उस मॉडल का नाम था स्पिरिट। तो ये मॉडल ऐसा था जो कि एक सामान्य ट्रैक्टर की तरह काम करता था, लेकिन इसमें किसी भी आदमी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये 2012 में इसके ऊपर विकसित होना शुरू हुआ, और अभी बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, जैसे कि जॉन डियर उसमें एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि बहुत सारा काम इसके ऊपर कर रही है, और इस साल के अंत तक वो मार्केट में ये लॉन्च भी कर देगी ऑटोमेटिक ट्रैक्टर
2: जी। तो इसके बाद ये कैसे काम करता है इसे जानना चाहेंगे हम, कैसे काम करता है ये?
3: बिल्कुल, तो ये ऐसे काम करता है कि इस ट्रैक्टर में आपको एक ऐप रहता है, जैसे मोबाइल में हम ऐप यूज़ करते हैं, वैसे ही आप एक ऐप के मदद से आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सारा कुछ आप ऐप की मदद से कर सकते हैं। ऊपर से दूसरी इसमें खूबी यह है कि ये सुरक्षा के माध्यम से बहुत अच्छा है, इसमें पलटने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जब भी हम कुछ कोई भी मोटर गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, उसकी माइलेज देखते हैं, तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, और इसको आराम से आप दूसरे खेतों पर भी ले जा सकते हैं, जैसे कि ये पूरा पूरी कंप्यूटर तकनीक पे बेस्ड है, और इसमें ऐसी मतलब कृषि में क्रांति लाने के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें सबसे अच्छा लाभप्रद चीज़ यह है कि इसमें ईंधन का उपयोग तो कम होता ही है, ऊपर से आप ऐप के मदद से आप सब कुछ जान सकते हैं कि कैसे आपका स्टेटस है, आपके फील्ड में कैसा ये जुताई किया है, या कैसे इसने क्या बोलते हैं उसको वीडिंग खरपतवार का नियंत्रण ये कैसे कर रहा है। इसमें ये आपको ऐप की मदद से आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, जो आपके फील्ड का वीडियो देख सकते हैं, डेटा का आप एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप अपने ऐप की मदद से कर पाएंगे। आप चाहे कहीं दूर भी रह रहे हो तब भी आप अपने ऐप से ये सब काम कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 6 जोड़ी स्टूडियो कैमरा लगे रहते हैं, जो ये जान जाता है कि कहीं उसको खेत पर कोई बाधा तो नहीं दिख रही है। मान लीजिए अगर खेत पे कोई उसको बाधा दिखता है तो वो अचानक से वहाँ पे वो फिर वहाँ पर रुक जाता है, फिर वो उसके आगे नहीं बढ़ता है।
2: मतलब सेंसर टाइप कुछ?
3: बिल्कुल हाँ, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और सेंसर्स के अलावा इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं, जो कि जान जाता है कि आखिर किससे कौन रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई घास होगा तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन मान लीजिए कोई बोर्ड
2: हाँ
3: या पत्थर गिर गया हो तो वो पहचान जाएगा कि ये कुछ गलत चीज़ है, इसलिए वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये स्वचालित है, तो आप इसमें ये भी आपको बता देगा कि कौन कौन से फसलों को कौन सी पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो ये GPS से भी इंटीग्रेटेड है, मतलब जो हम आप जानते होंगे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे मोबाइल पे आजकल रहता है गूगल मैप्स, उससे भी ये इंटीग्रेटेड है। तो बहुत सारा चीज़ आप एक साथ इसके थ्रू इसके मदद से कर सकते हैं।
2: जी तो ये तो हो गए कि कैसे काम करता है ये। अब हमारे किसान भाई हमारे श्रोतागण से खरीदना चाहते हैं तो कुछ जो प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके बारे में बताएं कि कौन अच्छी कंपनी है जो सप्लाई करते हैं।
3: भारत में तो फिलहाल ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में जो इसके ऊपर लगातार लगी हुई हैं और विकसित करने के लिए लगी हुई हैं, जिसमें प्रमुख कंपनियां हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर और एस्कॉट्स। ये तीनों कंपनी ने अपना उद्योग लगा दिया है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रैक्टर
2: अभी प्रोसेस में
3: ये परियोजना है जो चल रही है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 तक ये भारत के बाजार में दिखने लगेगा।
2: तो ये कुछ कंपनियां हैं जो अभी इस पर काम कर रही हैं और तैयार कर रही हैं इस ऑटोमेटिक ट्रैक्टर को, और जल्द ही हमारे बीच हमारे देश में ये मौजूद होगा।
3: मैम इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे जो मैं बताना चाहता था कि अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक के कृषि में ऑटोमेटिक अगर यंत्र का प्रयोग देखेंगे तो दो यंत्र बहुत फेमस है। वो दो यंत्र है, एक तो ड्रोन है और दूसरा है जिससे कि आप पशु का दूध निकाल सकते हैं, मतलब दूध दुहने का यंत्र। लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 2024 तक ये सब यंत्र से ज्यादा यंत्र बिकने वाला ये आपका ऑटोमेटिक ट्रैक्टर हो जाएगा।
2: जी,
3: तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं,
2: क्योंकि जो खेतों की जुताई की बात करें जो ट्रैक्टर करते हैं या हम हल से करते हैं तो खुद एक आदमी इतने कड़े धूप में जाकर नहीं कर सकता है। देखकर ही हम डर जाते हैं कि इतने कड़े धूप में बाहर कैसे निकलेंगे। तो भाई हमारे किसान भाई भी तो इंसान ही हैं, तो इस कड़े धूप में मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो इसलिए ऑटोमेटिक ट्रैक्टर बहुत ही उपयोग किया जाएगा और बहुत ही सहूलियत से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसकी मांग भी बढ़ती जाएगी बाजार में। तो क्या डॉक्टर साहब लेकर क्या कोई समस्याएं भी आ सकती हैं?
3: हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बहुत सारी समस्याएं अभी जो अमेरिका में ये लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे किसान कुछ समस्या लेकर आ रहे हैं। उसका प्रमुख समस्या ये है कि किसान ये जो है ये खुद से किसान इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: आप जानते होंगे कि जो भी यंत्र होते हैं वो किसान सदियों से खुद से रिपेयर करते हैं अपने खेतों पर, लेकिन इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए फिर आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा, जिस कंपनी से आपने खरीदा है उसको उस कंपनी के पास ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में किसान अमेरिका ऐसे विकसित देशों में इसका विरोध कर रहे हैं।
2: अच्छा।
3: लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये सब समाधान इसका किया जाए, लेकिन एक ये इसका मुश्किल ये आ रहा है। दूसरा एक मुश्किल और भी है जो कि है कि ये तकनीक जो है जितना ज़्यादा यूज़ होगा, जितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे उतना ही ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप जानते होंगे कि मशीन लर्निंग और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना डेटा मिलता है, उतना ज़्यादा काम होता है। तो फिलहाल जो नई तकनीक होती है उसको लोग यूज़ करने में संकोचित होते हैं, तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भारत में प्रयोग करेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा ये काम कर सके भविष्य।
2: जी जी, और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।
3: बिल्कुल।
2: तो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, ये एक नई चीज़ है जो अभी तक हमारे देश में आई नहीं है और जल्द ही आने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि किसी की अगर खासियत है तो कुछ खामियां भी हो सकती है, तो इन खामियों को ना देखते हुए या फिर इन खामियों से ना डरते हुए आप इनकी अच्छाई को देखें और ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। अगर ये हमारे बीच आता है हमारे इंडिया में तो ज़रूर इस्तेमाल करें किसान भाइयों, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
4: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
2: See you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कौनी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर जब हम बात कर रहे हैं कौनी मिलेट की, तो क्या कौनी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
5: देखिए कौनी जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कौनी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियाँ होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं, हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए, वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का

0: करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही, हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
1: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
0: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाता है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है, या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने, जुलाई अगस्त 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून, या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं, 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब यह है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी ना जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियां हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, SIA 3156, दूसरा है SIA 326, और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियां हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी वन, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए, 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहाँ जो 1 इंच से गहराई पर भी।

0: न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की। चूंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितने जरूरत होती है उससे ज़्यादा बरसात हो रहा होता है, तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली एक सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ दो सिंचाई भी। तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा, आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं। जैसा हमने पहले बताया, इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियाँ हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहाँ हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहाँ हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल बीडर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सब का बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी की दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सक्री पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से
0: किसान भाइयों के लिए। एक और मेरे पास एक ऑफर है जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैग्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की,
अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को ज़रूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो ज़रूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए, तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कृषि की बात करते हैं, जब हम खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत, वो किसानों का देश है। और समय बहुत बदल चुका है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है खेती गृहस्थी। लेकिन आजकल जो कुछ युवा हैं वो सोचते हैं कि शायद इसमें रोजगार नहीं है या फिर इसका महत्व क्या है, वो इस बारे में समझ नहीं पाते हैं। इसके बारे में समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश, मैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग में यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ और आज मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है उसके कुछ पहल जो बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और कुछ आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपके लिए भी ज्ञानवर्धन होगा। और उस क्रम में आप जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत और अपना राज्य पूरा देश की बात की जाए तो कृषि प्रधान देश है। आज भी पूरे देश में जो रोजगार की बात है, हम लोग सब जानते हैं रोजगार दिन ब दिन गिरते जा रहा है जी। टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से काफी इंजीनियरिंग क्षेत्र में
0: रोजगार
1: घटते जा रही है, लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी रोजगार की असीम
0: संभावनाएं हैं।
1: उसमें से आज अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 45% जो 45% आबादी, लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। और अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 80% ऊपर, 82% के आसपास। इसमें ग्रामीण रोजगार मुख्य स्रोत है। आज भी गांवों में लगभग 100% लोग खेतीबाड़ी करते ही हैं और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम उनका प्रधान कार्य है। उस दूसरा, जैसे खेती की बात की जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण आज हमारे पूरे देश की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है टोटल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक कृषि का है। आज भी एक जो अहम भूमिका सकल घरेलू उत्पाद में भारत पूरे देश का, उसमें 18% योगदान, लगभग 18% खेती से और कृषि से है। उसमें इस बार लगभग 25-26 में, पिछले साल की अगर बात की जाए तो लगभग पूरे देश की जो हम आमदनी, जिसको हम बोलेंगे देश का भी पूरा इनकम होता है, जिसको हम अर्थशास्त्र के भाषा में उसको सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोलते हैं जी। अगर उसको आमदनी के तौर पे देखा जाए तो लगभग 24 लाख करोड़ जो है इस पर केवल एक साल में खेती से सरकार को गई है। अगर आप देखिए, आप कितना भी विकसित हो जाइए, आप कितना भी विकास कर लीजिए, चांद पे चले जाइए, मंगल पे चले, लेकिन खाने के बिना आप नहीं रह सकते
0: जी, बिल्कुल नहीं।
1: और हमारे पास जो हमारे 150 से ज्यादा आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाली देश, वहां पर हमेशा सबको खाना मिले ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा पे हम लोग जो वैज्ञानिक लोग खेती में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, देश दुनिया में काम कर रहे हैं, जिससे आज कम से कम इतना हो गया है जो हम लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो खाना के बिना मतलब भूखा सोता होगा। तो कम हम लोग, और जितनी हमारी जरूरतें हैं पूरे देश में उससे कहीं ज्यादा, लगभग दुगुनी हम लोग उत्पादन करते हैं। तो जो खाद्य सुरक्षा की बात है, आप कुछ भी कितना भी अमीर हो जाइए, खाने के बिना आप नहीं रह सकते, खाना आपको खाना ही पड़ेगा। और उसके लिए कृषि क्षेत्र ही, कृषि एक सोर्स है जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन, लगभग 320 मिलियन टन, 325 मिलियन टन अनाज हम लोग एक साल में उत्पादन करते हैं, जबकि हमें लगभग 150-200 टन की आवश्यकता है। तो हम लगभग दो डबल के आसपास तो इस मामला में हम आत्मनिर्भर हैं, चावल गेहूं दाल में आत्मनिर्भर हैं। फिर इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये विदित है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, लग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कृषि का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली गांव का विकास होगा, हाँ। किसान का विकास होगा, गांव का विकास होगा। तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70% ग्रामीण परिवार कृषि से जुड़े हैं, 70% से ज्यादा, 45% तो मैं बताया था जो रोजगार दे रही है, लेकिन जो डायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 70% पूरे देश में, आप मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है, पूरे में पूरे जनसंख्या का 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। उसमें से मनरेगा, मनरेगा का नाम अभी जी राम जी नया नाम जी, रखा जी, गया है। फिर पीएम किसान जैसी योजनाओं का आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्राम गाँव में लोग इससे इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। फिर इससे जो आर्थिक प्रभाव भी जो हुआ, उसमें उद्योगों का कच्चा माल, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो पूरी तरह खेती पर आश्रित है। जैसे आप जितने जैम जेली बिस्किट चाय, आप जो भी इस तरह के खाद्य पदार्थ से बने हुए सामान आप जो भी लेते हैं, वो सारा का सारा खेती पर, कृषि पर आधारित है। तो जितनी खाद्य प्रसंस्करण, बहुत सारे वस्त्र जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके आधे से ज्यादा कपड़े जो हैं प्योर सूती के होते हैं या कपास के होते हैं, जिसको जूट बोलते हैं, कॉटन। अब कॉटन जो है जो सूती के, वो तो पूरा का पूरा खेती में ही होगा, कृषि आधारित ही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चीनी, पूरा चीनी उद्योग जो है वो पूरा का पूरा खेत पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। तो इस तरह से लगभग 14% औद्योगिक उत्पादन खेती से होता है। फिर निर्यात, निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुआ है। पहले जब हम हमारी देश आज़ाद हुई थी तो उस टाइम हम भूखमरी थी, खाने को नहीं मिल रहा था, और आज हम लोग $11 बिलियन का केवल चावल निर्यात किए, $11 बिलियन। फिर मसाले, सब्जियां, इसमें मसाले में हम शुरू से ही मतलब हमारे बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी पहुंच रही है, और हम हमेशा से हम उसमें एक नेतृत्व किए, और भारतीय मसालों का काफ़ी मांग है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। 2025 में कृषि निर्यात लगभग $50 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 25-26 के। फिर जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, वो सब में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जैसे महंगाई, प्याज का दाम बढ़ता है तो दूसरे चीज का भी दाम बढ़ जाएगा।
0: जी, जी।
1: तो ये जो है इसमें हम

0: मुद्रा जो एक्सपोर्ट जिस फसल का जितना मतलब यहाँ से जितना एक्सपोर्ट होगा उतना विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, उसमें हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय का भी अहम योगदान है। कैसे, जो हम लोग 5 फसलों को GI करवाने में, जो GI टैगिंग कर देने में जो हमारी प्रयास रही, उसमें जो हम सफल हुए, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत अपने देश में भी काफ़ी मांग बढ़ी दूसरे बाजारों में, जिससे जैसे उससे आमदनी बढ़ा। और विदेशी मुद्रा जब हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट होता है, तो उससे विदेशी मुद्राएं का भंडार बढ़ रहा है। उसमें जो मखाना का मिथिला मखाना के नाम से जब GI टैग मिला, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा विदेश में भी मांग बढ़ी, और उसके कारण समझे उससे विदेशी मुद्रा भी हमारा बढ़ रहा है। बिहार जैसे राज्यों में मखाना निर्यात उल्लेखनीय है, और जर्दालू आम का भी निर्यात काफ़ी बढ़ा है इससे। फिर उसमें क्या क्या अब चुनौतियां हैं, अब जब हम कृषि जब इतना हमारे लिए जरूरी है, इतना ज़्यादा लोग इस पर आश्रित हैं, इतने ज़्यादा रोजगार और भी ज़्यादा रोजगार वृद्धि की संभावनाएं हैं, तो क्या क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं और क्या उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे आज भी हमारी उत्पादकता जो है, जो अगर हम बोलें जो प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर जितनी उत्पादन होनी चाहिए, आज भी हम अमेरिका जापान जैसे देशों से बहुत कम है। तो हमारे पास जो खेती योग्य जमीन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता कम है। अगर उत्पादकता बढ़ा दी जाए तो हमें, और हम जितनी उत्पादन कर रहे हैं उससे डबल हम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे प्रति हेक्टेयर उपज वैश्विक औसत से 50% कम है हमारी, मतलब जितना औसत जो पूरी दुनिया की है उसके आधार से, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हमारा आधी है, 50% कम है। और मानसून पे निर्भरता हमारी जो है 60% है, अगर बारिश नहीं होती है, वर्षा अगर ठीक से नहीं होती है मानसून में, तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन कम हो जाता है। 60% क्षेत्र जो है मतलब वर्षा पे आधारित सिंचाई क्षेत्र है। फिर जलवायु का क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे सूखा, बाढ़, बिहार में ही लीजिए तो दक्षिण बिहार जो सूखा पीड़ित है और उत्तर बिहार जो बाढ़ में डूबा रहता है, तो 5-10% उत्पादन का लॉस हो जाता है इसमें जो, और उसको कवर करने के लिए ऐसे सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवस्था किया है। फिर उससे बाजार सुधार की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य में आज देखिए जो APMC नहीं है, उसके लिए हमें MSP नहीं मिल पाता है, तो ये सब यहाँ पर भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो APMC हो गया, ई नाम हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे इस बार मैंने बताया, जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस बार बजट में 1.64 लाख करोड़ रुपया बुनियादी ढांचा के लिए दिया गया। और ड्रोन तकनीकी, मतलब इस बार जो एडवांस अब जो है टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाना जरूरी है अगर आपको उत्पादकता बढ़ाना है। तो जैसे AI हो गया, भारत विस्तार योजना जिसको बोलते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के, फिर ड्रोन आजकल इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, इस सब को बढ़ावा की आवश्यकता और है। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो राज्य GDP में 20% कृषि योगदान है। अगर पूरा देश की बात की जाए तो कृषि का 18% है, और बिहार में जिसको SGDP बोलते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसमें बिहार में कृषि का 20% योगदान है। फिर बाजार उत्पाद सामग्री स्टार्टअप्स जैसे अपने विश्वविद्यालय में है, बिहार विश्वविद्यालय में है, उसके तहत और उसके माध्यम से और भी लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और बजट 2026 में जो मखाना प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया है, तो इससे कृषि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का इंजन है, और उत्पादकता विविधीकरण से आय दुगुनी का लक्ष्य रखा गया है।
1: सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से भारत और कृषि का रिश्ता आज भी मजबूत है, और कुछ चुनौतियाँ हैं जिसके लिए काम किया जा रहा है और सरकारें काम कर रही है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सी बातें बताई आपने।
0: जी, धन्यवाद मैम।
1: दोस्तों, आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर MP मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
7: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्राल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
6: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
7: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। या घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगॉन नार्डस, सिम्बोपोगॉन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
6: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
7: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
6: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
7: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लेटराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
6: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए?
7: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नेमा, CKP25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
6: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो?
7: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के 1 वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
6: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
7: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
6: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
7: रोपण का कार्य वर्ष में 2 बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के 1 वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र 1 भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है।
6: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
7: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
6: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
7: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3-4 कटाइयों प्रति वर्ष।
6: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
7: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45-50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
6: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
7: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग है लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियों सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15-20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
6: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
7: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60-70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
6: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
7: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसमान उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए, इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45-50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या होता कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
6: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
7: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
6: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
7: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
6: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
7: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
6: जी तो श्रोताओं, आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा, और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,
8: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा।
इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही, लाभ कई।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसानौ, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने। और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है ठीक है। तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: NMDD या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 एफएम ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: जी धन्यवाद।
1: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
2: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी,
2: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं
1: जी,
2: वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है
1: जी।
2: तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
1: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
2: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है
1: जी जी।
2: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है।
1: अच्छा।
2: तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
1: अच्छा।
2: तो इसी के इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुआरी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद

0: पछेती वेराइटीज हैं, पछेती प्रजातियाँ, उसके अंदर आपका जो वेराइटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वेराइटीज़ आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी मागी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है, इस प्रकार की कई वेराइटीज़ हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं, और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं, और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
0: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूलगोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
0: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लिए लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष,
0: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
1: जी।
0: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए, और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप दो क्यारियां बना रहे हैं, तीन क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है, लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा,
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
1: मतलब
0: तैयार होती है,
1: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
0: जी, अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
0: बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको, जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो, एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में, और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फॉस्फोरस के लिए, जो हम फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फोट से फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज़ का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो ज़मीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब ज़मीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज़ से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो ज़मीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बना रहता है,
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका
1: दाम मिलेगा।
0: और भंडारण करने के लिए एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85-90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2-3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
0: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16-18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता।
1: जी,
0: तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किसमें उगाई जानी चाहिए, और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल?
0: हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
1: अच्छा।
0: है तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा।
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान पहुंचा,
0: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को पॉइंट एक नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेवेस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: माँ कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
6: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से 4 कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी वाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं, और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
5: जी तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
6: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
5: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
6: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीट प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
5: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
6: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
5: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
6: बिल्कुल।
5: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
6: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
5: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
6: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश ये देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
5: सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद आपको भी।
5: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दे और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाए। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
2: जी,
3: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
3: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
3: धरती का हरियाला उत्सव।
4: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
5: नाना जी।
6: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
5: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
7: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
6: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
7: ये लो, नानी जी भी आ गई।
8: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
6: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
8: हाँ वो तो है।
5: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
8: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
6: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
5: कहाँ से आया है
6: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
5: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
6: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
6: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
5: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
6: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
5: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
6: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
5: अच्छा नाना जी।
6: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
5: अच्छा।
6: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
5: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
6: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
8: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
6: हाँ।
8: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
5: ओ।
8: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
6: बिल्कुल।
8: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
5: अच्छा।
8: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
5: अच्छी अर्थव्यवस्था।
8: हाँ।
6: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा

0: और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ

0: हो और क्यों रो रहे हो?
1: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
0: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
1: अच्छा।
2: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
0: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
0: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
2: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
0: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
0: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
0: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
0: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, और आज खास तौर पर हम बात करने वाले हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। जी हाँ पशुपालक भाइयों, आज आपकी पशुओं से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और पशुओं की जहाँ तक बात है तो आज बकरी के बारे में हम बातें करेंगे। जहाँ तक हमारे छोटे और मंझोले किसान भाइयों की बात आती है और पशुपालक भाइयों की बात आती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बड़े गाय और भी भैंस जैसे उन सारे पशुओं को वो पाल सकें, क्योंकि उन्हें पालने में लागत ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं देखभाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप बकरी पालते हैं तो आपके पास कम समय में आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती हो, और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। और कहीं ना कहीं इसे किसानों का ATM भी कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अचानक से फंस जाते हैं, तो उस समय ये बकरी जो आप पाल रहे हैं वो आपके काम आते हैं। तो आइए आज कुछ बातें जानेंगे, और सबसे पहले हम आपको अपना विषय बता दें। आज का विषय है बकरी में सामान्य रोग एवं बचाव के उपाय। जी हाँ, अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो उसकी खास देखभाल आपको करनी होती है, उनके अंदर जो रोग पनप रहे हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है, और उनके रोगों का उपचार कैसे करें उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बीमार बकरी की जहाँ तक बात आती है तो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हम आदि तो नहीं होते हैं कि हम जैसे मनुष्य को देखते हैं मनुष्य कह देता है कि भाई मुझे बुखार लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो मुझे है, लेकिन बकरी बोल नहीं पाते हैं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये बकरी बीमार है और ये बकरी स्वस्थ है?
6: देखिए पशुपालकों के लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे ही आप पशु की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, आप खाना लगाते हैं पानी देते हैं उसके पास जाते हैं, आप उसका व्यवहार देखते हैं और पता कर सकते हैं कि व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सपोज़ अगर बकरी सुस्त लग रहा हो, उसका उठना बैठना कम हो, सपोज़ कि वो खाना नहीं खा रही है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई दिक्कत हुआ है। कभी कभी नाक से पानी निकलेगा, आँख से पानी निकलेगा, या फिर बहुत सारा मुंह और सूख जाएगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि पशु का जो नॉर्मल व्यवहार है वो बदल गया है, वो सुस्त पड़ गया, सिर झुका हुआ रहेगा, कान दोनों झुका हुआ रहेगा। आप उसके व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं तो आप एक आवाज़ लगा करके भी पता कर सकते हैं कि आपके आवाज़ के प्रति उसके रिएक्शन क्या है। पशुपालक अपने पशु से इतना जुड़े होते हैं कि पशु को बुलाते हैं तो पशु अपने पास किसान के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका खाना कम हो जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, उसका सिर झुका के बैठना, उसके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, या फिर कभी कभी अफरा बीमारी हो तो पेट भी फूल जाता है, कहीं घाव हो, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, वो गाल घाव बाल से ढका हुआ रहता है तो आप देखेंगे मक्खी लग रहा है बहुत सारा, वहाँ पर गीला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब नज़दीक जाके बाल हटा के देखेंगे तो ढेर सारा वहाँ पर आपको पिल्लू नजर आएगा कि घाव है और पिल्लू फट गया है उसमें। हम तो ऐसा भी देखें कि किसान जो है उनको पता ही नहीं था और एक महीने से बकरी के पेट में घाव है और उनको बाहर से दिखता नहीं था। जब बहुत सारा कीड़ा मैगेट उंड करते हैं वैसा हो गया, जब भयावह स्थिति तब वो दौड़ करके हमारे पास आए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना देने जाते हैं, उसके पास पानी देने जाते हैं, तो आप उसका ध्यान दें, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखें और समझें, और खुद भी पता कर सकते हैं इस तरह से कि उसके परिवर्तन है सामान्य व्यवहार में, तो आप संपर्क करें पशु चिकित्सक से।
5: हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया पशुपालक भाइयों की, आप जैसे कि डॉक्टर चेकअप करते हैं तो आप अगर उसे खाना देने जाते हैं तो चारा देने जाते हैं तो आप एक बार देख लें उनके शरीर पर कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें तो आपको नहीं दिख रही हैं। इसके अलावे उनके सिम्टम्स भी बताएं डॉक्टर साहब ने, जैसे कि कान झुके रहते हैं, आँख से पानी, नाक से पानी आना, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जो पशु है, आपकी जो बकरी है वो बीमार है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी जो है ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, इस ठंड के समय में कौन कौन से रोग बकरी में देखे जाते हैं?
6: देखिए, जैसे सीजन परिवर्तन होगा, थोड़ा अभी गर्मी से तुरंत ठंडी वातावरण में जाएगा, ठंड हवा सांस में लेगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसको फेफड़ा में प्रॉब्लम हो। निमोनिया बहुत कॉमन इस सीजन में, ठंडे के सीजन में, और नाक से पानी आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि बार बार छींक रही है, खांसी आ रहा है और नाक से पानी गिर रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण है। ये लंग में जो इन्फेक्शन होता है उससे होता है। और दूसरी बीमारी जैसे कि बकरी कभी अनाज ज़्यादा खा लिया तो बायां साइड पेट फूल जाता है, उसको अफरा बीमारी कहते हैं। और आप देखेंगे ठंडी के दिन में कभी कभी पूंछ के पीछे बहुत सारा पतला पैखाना लगा हुआ रहेगा, वो डायरिया का लक्षण है। डायरिया भी बहुत कॉमन ठंडी के दिनों में, अधिकांश बकरी की मृत्यु दस्त के कारण होती है। डायरिया एक बार पकड़ता है फिर आपको वो संभल पाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी बीमारी है, आप उसको शुरू से उस पर ध्यान दें तो आप उसको संभाल सकते हैं, पशु को उस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, जो इस तरह का वर्म है, इंटेस्टाइन में भी उसको वर्म हो जाता है, राउंड वर्म और स्केरिस जैसा। इसके बाद आता है डर्मेटाइटिस, स्किन में डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा स्केबीज का भी इन्फेक्शन होता है, कभी कभी मैगेट उंड देखने को मिलता है। इसके बाद है एक ORF, मुंह में बहुत सारा स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वार्ट जैसा ग्रोथ कर जाता है, ORF बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज है, इसको कंटेजियस एक्थाइमा भी कहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारी है जैसे TB, पैराट्यूबरकुलोसिस, गलघोटू, FMD, ये सब बीमारी भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक हीमोप्रोटोजन डिजीज भी, ट्रिप्नोसोमा का भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और फूट रॉट, पैर में खुर के बीच में घाव हो तो इस तरह का भी आदिवासी बीमारी है, तो उसको फूट रॉट कहते हैं। और थनेला का भी रोग बकरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी है कि बात करें कि आपको सामान्य क्या दिखता है इस सीज़न में। जैसे ही आगे ठंडी का सीज़न आने जा रहा है तो बकरी में ठंडी के कारण यदि आप ठंड हवा से नहीं बचाएंगे उसको निमोनिया होगा, निमोनिया के बाद दस्त भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पतला पैखाना हो जाएगा। और इस समय वायरल इन्फेक्शन जो एक PPR बीमारी कहते हैं उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इस सबसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि बकरी को प्रत्येक 3 साल में एक बार PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका लगवाने से ठंडी में बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
5: मतलब जो अभी ये ठंडी में आने वाली बीमारियों के बारे में आपने कहा, तो उसका एक ही सलूशन है कि टीका लगाना, या फिर उसके अलावा भी कुछ और?
6: हाँ, जैसे पेट में कीड़ा हो जाता है, बहुत सारा टेप वर्म है, राउंड वर्म है, एस्केरिस है, एक हिमोंकस कंटॉर्टस एक वर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है। तो यदि आप इस सब जो वर्म है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इससे बचना चाहते हैं तो डिवर्मिंग कीजिए। प्रत्येक 3 से 4 महीने पे इसको अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, आइवरमेक्टिन, इन सारी दवाओं से आप उसको डिवर्मिंग कराएं नियमित रूप से। पेट में कीड़े नहीं होंगे, जोक नहीं होंगे, तो उसको इस तरह के डिवर्मिंग से बचा जा सकता है।
5: अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन अपने बकरी के लिए बनाएं। और सर, इस अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन वो बकरियों के लिए तैयार करें, तो उसके लिए किन किन बातों पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा?
6: देखिए, शुरू से ही बकरी को जो आप खाना पीना देते हैं उसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि आप चरने के लिए जमीन बहुत कम हो गया, बकरी को जैसे खुल करके चरने देते थे तो नेचुरली वो अपना बहुत सारा पौष्टिक चीज वो चर करके प्राप्त कर लेता था। लेकिन आजकल जो है चारागाह की कमी होते जा रही है, आप खुला में छोड़ेंगे दूसरे खेत में खाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी खेत में दवा छींटा जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अगर आपकी बकरी वहाँ जाके खाती है तो उससे भी नुकसान होगा। आप जो स्टॉल फीडिंग का ट्रेंड आ रहा है, हम लोग घर में पालते हैं और खेत से चारा ला करके खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से पौष्टिक चारा देना पड़ेगा। कुछ दलहनी पौधे वाला, बरसीम, काउपी जैसा चारा भी उसको देना पड़ेगा, पौष्टिक चारा। और उसके साथ साथ अनाज देना है। एक बकरी को प्रतिदिन जो है आपको कम से कम 200 से 250 ग्राम अनाज देना ही चाहिए, और उसको 2 से 3 किलो हरा चारा उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये देते हैं, साथ में मिनरल मिक्सर देते हैं, कुछ नमक देते हैं, 10 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, आप नमक, मिनरल मिक्सर, हरा चारा और अनाज ये सब खिलाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि कभी किसी तरह की बात आ जाए तो समय रहते तुरंत इलाज करें। जैसे कि अभी जो ठंडी के सीज़न में आपको देखने को मिलेगा डायरिया, बहुत ज़्यादा दस्त दिखता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल का, लाइसिप टी डेज या टिनिडाजोल के नाम से दवा आती है, तो उस दवा को, टेबलेट को तुरंत अपनाएं। उसके साथ भी यदि दस्त बंद नहीं हो रहा है तो एक नेबलॉन पाउडर आता है, नेबलॉन पाउडर दें और वो रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं कि पैर पशु का बांधते हैं, बकरी का क्या करेंगे, चारों पैर में कपड़ा बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यदि सामान्य दस्त हो, सामान्य डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, पाचन में समस्या हो, आप खाना एक दिन के लिए बंद कर दीजिए बकरी का, वो अगले दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो अगले दिन दवा दें, एंटीबायोटिक्स दें और कुछ सपोर्टिव थेरापी दें, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं।
5: और डॉक्टर साहब, देखा गया कि ठंड के समय में जो बकरी पालक, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए जो ऊनी कपड़े हैं वो पहना देते हैं कई बार, तो क्या ये सही है?
6: बिल्कुल, देखिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं वैसे उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ आप रखते हैं, गर्मी के दिन में तो बकरी को खुला भी रखते हैं, पेड़ के नीचे भी रखते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ठंड हवा से, सर्द हवा से उसको सुरक्षा देना, बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ठंड हवा लगती रहेगी भर रात तो अगले दिन वो बीमार रहेगी, खाना नहीं खाएगी। तो ठंड हवा से बचाएं, डायरेक्ट जो है सर्द हवा उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कवर होना चाहिए, छत के अंदर रखें। यदि आपको अपना ही घर है तो कहीं प्लास्टिक का भी एक खड़ा करके उसको प्रोटेक्ट करें ठंड हवा से। और कभी कभी होता है किसान क्या करते हैं कि घर को चारों तरफ से इतना पैक कर देते हैं कि उससे हवा नहीं निकलता है, तो वो भी हानिकारक है। उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब ताज़ी हवा आनी चाहिए और अंदर जो गंदी हवा है जो उसमें
5: बाहर जानी चाहिए,
6: वो जानी चाहिए। ये वेंटिलेशन होते रहना चाहिए और ज़्यादा ठंड हवा नहीं आना चाहिए। खिड़की पर है पर्दा लगा दे, लेकिन ऊपर थोड़ा सा खुला छोड़ दे।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई अपने बकरी को चेक करते हैं, उसके शरीर पर चेक करते हैं कि कहीं कोई निशान या फिर कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो नहीं दिख रही, अगर उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो पशु है, उनकी जो बकरी है वो बीमार है, तब उपचार के लिए वो किन के पास जाएंगे?
6: देखिए, प्रत्येक किसान को ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका पशु बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड। आप खुद ही बहुत कुछ उस स्थिति को सुधारने के लिए अपने से कर सकते हैं। जैसे कि बकरी के शरीर में मैगेटुंड कहते हैं कि घाव था और उसमें बहुत सारा पिल्लू फट गया, कीड़े मकोड़े हो गए, आप घबरा जाते हैं कि लगता है कितना बड़ा मुसीबत आ गया। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको इलाज आना चाहिए, उसका उपचार आना चाहिए। आप अधिक जानते हैं तो मैगेटुंड का इलाज खुद भी किसान कर सकते हैं। उसकी दवा आती है टॉपिक्योर हिमैक्स, यदि वो आप सही सही इस्तेमाल कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि अपने से, तो आप अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, प्रखंड के प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें और वहाँ एक पशु चिकित्सक से, योग्य वेटनेरियन से आप जरूर अपने पशु को दिखवा लें, जांच करवा लें। और अभी जो है, कभी कभी सरकार की तरफ से टीकाकरण की योजनाएं चलती है, PPR का टीकाकरण बकरियों के लिए चलाया जाता है। ठंडी से पहले ये इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में यदि PPR का टीकाकरण सरकार के द्वारा आपके पशु चिकित्सालय से चलाया जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो आप टीकाकरण लगवा लें।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, ने फर्स्ट एड की बात कही, तो जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन जहाँ तक पशुओं की बात आती है तो उनके फर्स्ट एड के लिए क्या कुछ शामिल होना चाहिए वो जानना चाहिए।
6: देखिए, फर्स्ट एड सिंपल है कि आप देखते ही किस तरह का, सपोज कोई पशु को चोट लग गया कहीं, हाँ, खून बह रहा, हाँ, है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि खून बहना बंद हो जाए। आप बैंडेज रखते हैं घर में, किसी तरह उसको टाइट करके बांध दें कि जो खून का रिसाव है वो तेज ना हो, वो बंद हो जाए, और कुछ देर वो बंधा हुआ रहेगा तो ब्लड जो है ब्लीडिंग क्लॉट होगा और वो जम जाए, अच्छा, बंद हो जाएगा, तो पशु की जो मृत्यु हो सकती थी वो बच सकता है। सपोज यदि घाव दिखता है कहीं, आप खुद भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डिटॉल से, सेवलॉन से, किसी भी तरह का ये आपके पास होगा, सोफ्रामाइसिन हो या अपने घर में बीटाडीन हर किसान रखते हैं या लोग अपने लिए भी रखते हैं, उससे उस घाव को पहले ताज़ा पानी से धो के उस दवा को लगा दें, उसके बाद आप निश्चित रूप से संपर्क करें कि उसका उचित उपाय क्या है। लेकिन फर्स्ट एड सब कि यदि हम हल्का पेट फूला हुआ देखते हैं पशु को तो मीठा सोडा खिला सकते हैं, मीठा, अच्छा, सोडा खिलाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप दो दो दिन तक परेशान हैं, डॉक्टर साहब को खोजें। मीठा सोडा, यदि पशु में अफरा की बीमारी हो, यदि पेट थोड़ा फूल गया हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन खाना नहीं दीजिए, अच्छा, और शाम में आप उसको मीठा सोडा खिला दीजिए, अगले दिन बिल्कुल वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
5: तो देखा जाता है कि पशुओं में कई बार बीमारी और रोग की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो खर्च है उनसे गुजरते हैं और इनका जो आर्थिक नुकसान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक देखा जाए तो आर्थिक नुकसान से और इन पशुओं के रोग की वजह से जो इनका आर्थिक नुकसान होता है हमारे पशुपालक भाइयों का, तो उनसे वो कैसे बचे?
6: देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे पशु बीमार रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, उससे
5: चाहे हम मनुष्य भी बीमार रहते हैं,
6: बीमार रहते हैं, हमारा नुकसान होता है। जो पशु तेजी से शरीर में वृद्धि होना चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, आज वो 4 किलो का है तो वो बहुत जल्दी 8 किलो का भी हो जाना चाहिए, तो इस तरह से यदि वो शरीर में वृद्धि दर ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत आपको मिलती है, रिटर्न मिलता है। और उसके पेट में यदि कीड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो खाते पीते रहेगी लेकिन उसके शरीर में एक आसातीत विकास नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसको होना चाहिए था 15-20 किलो का, लेकिन वो 7-8 किलो भी नहीं पहुंच पाया, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान है, सीधा कम से कम 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से पशु को यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको अधिक से अधिक 25-30-40 रुपये का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो लेकिन आप एक हेलमिंस होता है इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स, उससे एक बकरी में आगा गया है कि एक बकरी को 168 रुपये का नुकसान होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक टर्म में जानना चाहेंगे कि एक सिर्फ इंटेस्टाइनल पैरासाइट के चलते इतना नुकसान हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं कि आप यदि 10 बकरी पालते हैं तो उस तरह से यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे और सबके पेट में जोंक हो जाएगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा।
5: तो इस तरीके से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने टीकाकरण की बात कही, PPR टीकाकरण की बात कही, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएंगे, पशु चिकित्सक वो दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, खासकर बकरी के बारे में हमने बात किया, बकरी में जो रोग देखने को मिलते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि ठंड के मौसम में जो रोग देखने को मिलेंगे उनके बारे में हमने बात किया और बचाव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया। तो डॉक्टर साहब आज अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने प्रस्तुत की। तो आप सभी से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे पशुपालक भाइयों से अगले दिन मैं लेकर आऊँगी अगले विषय को, तो ये वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी पानी उपलब्ध कराए और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
1: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
0: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
1: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी कारण से

0: आप जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि, नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं, तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
5: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
7: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है।

0: सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं
1: जी। तो सर अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
0: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकोनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है। पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं
1: जी। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
0: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार अंकुर शिलाजीत पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव मोनेटा MSCS 13 MAX 58 PUSA 16 PUSA 20 PUSA 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहले किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वेराइटी है JS 335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वेराइटी जो है वो MAX 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वेरायटी अहल्या चार है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वेरायटी है प्रताप सोया वन, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वेराइटी GH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वेराइटी GH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वेराइटी GH95-60 है, इस वेराइटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वेराइटी का मुख्य 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरन एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वेराइटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोट तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज़ हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्य क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्य क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जरे को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाली किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरी फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किलो जेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलो या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को प्रभावित बीजों को डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्लोरोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है, यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मैथोमॉक्स 40 ग्राम या टाइट्रो जोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजिम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 mg दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं। और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर। सर, आप हैं KVK सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए। खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो। अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें, उसको सही दुरुस्त करवा लें। दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें, पानी जमा नहीं हो, ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग, आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप, उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें, उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें।
3: सर, ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए। अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए?
4: देखिए किसान भाइयों, इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है, ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं, तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले, और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो। दूसरा, आप मिनरल मिक्सचर आप जरूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए। चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा किए हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर आप ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
3: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
4: देखिए, बस अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंहपका रोग जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये ज़रूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अक्रेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपनी पशुओं को साल में 2 बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है, तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी डिटर्जेंट साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें। और पोटासियम परमैंगनेट, जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में एक चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनेल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा, जो अभी जो मौसम आता है, देखिएगा कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो आप ये कोशिश करें। और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD, HS, BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा, जो खास करके जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात ख़त्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
3: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
4: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें। और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रीन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं, वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोकन, अठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
3: जी सर। सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में ज़रूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें। बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
4: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा का जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से, तो उसको अच्छे सीजर से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ़ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करे उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें और कम से कम 1 घंटे के बाद, जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं, जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का 1/10 एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का 1/10 कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर काफ़ी, खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप विद बच्चों, जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है, उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में, तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें आप। अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है, FMDHS BQ, इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की, भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसका, इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
3: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का, और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: एक जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम
5: पत्थर का सूप।
6: कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी।
7: बहुत बारिश पड़ रही है, कपड़े भी भीग गए, कहाँ जाऊँ, इतनी रात है। सामने मकान है, करीब जाकर देखता हूँ। वाह, ये तो शानदार मकान है, क्या करूँ। हिम्मत करके अंदर चला ही जाता हूँ। चलो चलो।
6: वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया।
7: अरे यहाँ कोई रहता है? अरे यहाँ कोई रहता है?
6: दरवाजा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा,
8: जी कहिए, यह बावर्ची खाना है, आपको मुझसे क्या काम है?
7: जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ।
8: मुझे भी बहुत काम है, अभी मुझे खाना बनाना है, मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ।
7: देखिए मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो, देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर कांप रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ, बस मैं थोड़ी देर ही बैठूंगा।
8: ठीक है ठीक है, तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन देखो मेरा वक्त खराब मत करो, चुपचाप बैठो, चलो।
7: जी जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इधर से भी सुखा लूं, उधर से भी सुखा लूं।
6: वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई।
7: हाँ, क्या करूं? कपड़े तो सूख गए, मेरी तो भूख और बढ़ गई है, कोई तरकीब लगानी होगी।
8: भाई
7: क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ?
8: अच्छा?
7: मैं बहुत अच्छा सूप तैयार कर सकता हूँ, इसमें खर्च भी कम होता है, और इसे पत्थर से तैयार करते हैं।
8: क्या? पत्थर का सूप?
9: भाई मैंने तो ऐसे सूप का नाम कभी नहीं सुना।
8: भाई सुनो, तुम कैसे बनाते हो ये सूप?
7: अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना।
8: तो ठीक है, ठहरो। ये लो आंडी और ये लो पानी।
6: बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया।
7: बस बस बस बस बस, अब ये रहा पत्थर, अब इसे हांडी में डाल दो।
9: अच्छा अच्छा,
7: डाल दो डाल दो डाल दो, डाल दिया। पानी चखू। बड़ा मजेदार सूप है, मैं जरा नमक पड़ेगा। भाई तुम तो जानती हो, नमक तो हर खाने में होना जरूरी है।
9: जरूर जरूर।
7: ये मेज पर सब्जी रखी है ना?
9: हाँ हाँ सब्जी है,
7: इसे भी डाल देता हूँ।
9: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डाल दो डाल दो।
7: बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा लहसुन और प्याज पड़ेगा।
9: तुम इसे देखते रहो। है
7: ठीक है,
9: देखो देखो कहीं ज्यादा ना पक जाए।
7: ना, ना, ना।
9: मैं अभी प्याज और लहसुन लेकर आता हूँ।
7: ले आओ ले आओ ले आओ,
9: ये लो दोनों चीजें।
7: लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ ला। डाल देता हूँ इसमें। बस अभी हुआ जाता है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सूप तैयार हुआ। बस जरा इसे चलाने की जरूरत है।
9: हाँ हाँ चलाओ चलाओ।
6: बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था। वो सोच रहा था,
10: अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पका कर लोगों को दिखाऊंगा। और सबको हैरत में डाल दूंगा। और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे।
7: ए भाई, बावर्ची भाई, भाई सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, इसमें डालकर सूप को गाढ़ा करूंगा।
9: हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लाया।
7: ले ले ले
9: ये लो आटा।
7: ले आया ले आया, ये आटा मैं डालता हूँ सूप में। फिर से चलाओ, खूब पकाओ खूब पकाओ रे, चखते जाओ चखते जाओ चखते जाओ रे, चखू।
9: अरे भाई
7: जरा सी कसर है, वरना मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ऐसा सूप चखा भी नहीं होगा।
9: ना भाई ना, मैं कहां चखता। और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता। मगर सुनो, अब क्या कसर रह गई इसमें।
7: अरे बावर्ची भाई, इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे।
9: बादशाह को? ठहरो ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ठहरो, ये लो ये लो ये लो,
7: ले
9: ले लो ले लो।
7: बस बस बस बस बस, ये दूध डाला हांडी में। घुमाओ रे घुमाओ, चलाओ रे चलाओ। वाह वाह, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है।
9: देखो किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ।
7: हाँ
9: हाँ बताओ।
7: है
9: क्या?
7: बस जरा से सब्र की जरूरत है। तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है। अरे अब तो तमाम रसोई में हांडी की खुशबू फैल रही है,
9: और वो भी पत्थर के सूप की।
7: अरे ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ।
9: अच्छा दिखाओ।
7: मैं हांडी में से ये पत्थर निकाल रहा हूँ। ये पत्थर अभी ज्यों का त्यों मौजूद है।
9: है? ये देखो। वाह, ये तो कमाल हो गया।
7: चलो मिल के आधा आधा सूप पियेंगे।
9: हाँ हाँ खूब पियेंगे खूब पियेंगे। वाह, पत्थर का सूप।
6: पत्थर बावर्ची को दे दिया। दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया।
10: पत्थर का सूप,
7: पत्थर का सूप। पत्थर का सूप।
4: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार शमाइला परवेज और नीरज शर्मा, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT

0: आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
9: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
7: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है? और
9: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं,

0: हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में, तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है, तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है, तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45-50 दिन में रोपाई करने के 45-50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें, लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया हैं, और 20 सितंबर को ये पक्कर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है, तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2-3 बार जुताई करके पट्टा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6-7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5-25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9-10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए दो सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए। और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7, जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7। इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियाँ हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है। हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार। साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्न की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है, क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 240 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के, जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों, जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किशन भाइयों, आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए एक बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी एक बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को दो भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस प्रकार देखा जाए, एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: तो ये भी काफी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप जरूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
0: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
2: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
4: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
2: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
4: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं, मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं, अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें, जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे, तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपके बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए, उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होते हैं हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं, और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन एक हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। तीसरी चीज़ हो गई, तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं, तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है, तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है, उस तरह से तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके दो हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है आप वो डाल दीजिए, और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
2: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
4: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, पूसा RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
2: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिम हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के आठ साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6-7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले, या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपने गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, न कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं, और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हो 7-8-10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2-3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है, और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
0: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस
1: कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए। इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की बात, तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को, पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
1: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सभी किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं, तो इसमें मालदा, जरदालू और गुलाब खास, कृष्ण भोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है, तो हम हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो और तो वैसे वृक्षों का, वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते। इसलिए उन जगहों में जहाँ के गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या एक दो पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीज़ों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप, आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और अपने स्थान विशेष, जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं और 6-7 साल तक आप अगर अपने मेहनत को यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं ताकि हम 6-7 साल बाद पछताएं नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम, पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे, जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो लगाने के पहले 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसके एक नियमित नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, वो सब ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा करें, और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 kg कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg और 4 से 5 kg आप नीम या अंडी की खल्ली को लगाएं और डालें, मिक्स करें उसमें, और उसको मिक्स करने के बाद जो है उसको गड्ढे में भर दें। गड्ढे में भरने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरह से सिंचित करें गड्ढे को, ताकि वो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए गड्ढे में, और जब पूरे अच्छी तरह से भींग जाए और बैठ जाए तो पुनः एक बार उसमें अच्छी तरह से सिंचित करें। जब दूसरी बार सिंचित करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाएगी, और उसके बाद ये ध्यान रहे कि मिट्टी को जो उसमें गड्ढे जो है उसके 3 से 4 इंच ऊंची तक वो मिट्टी रहे। उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे तब फिर क्या है, बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा, जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे, उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो उसमें जड़ के जलने की समस्या हो रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आप 1 महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3 से 4 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया, उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी 2 बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छी तरह से मिट्टी बांटने दें, और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा। और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
0: तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्र, मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को?
1: देखिए, पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक, कुछ हमारे कुछ एरिया में जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है, और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं उसको डालें, और फ्यूराडोन मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें, जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें, और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
0: अच्छा,
1: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं क्योंकि उनका, हाँ, मौसम्बी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी। अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद, जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडे के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं, और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद

0: की जरूरत होती है और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है। उसी तरह से 40 से 50 ग्राम या 40 से 60 ग्राम प्रति वर्ष एक साल के पौधे में पोटास की जरूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं। पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 700 से 800 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400 से 600 ग्राम, और पोटास की मात्रा जो है वो 600 से 800 ग्राम प्रति पौधे होती है। और ये निर्भर करता है, अगर आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे, अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटास की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे, और ये उर्वरक आप दो भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
1: कहने का मतलब है कि जब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो हमने कम कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएँ। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
0: देखिए, पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसको उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
1: जी जी।
0: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए, 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चितता करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और
1: फल अच्छे
0: होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, जस्ट अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
0: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें, अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें ताकि उसके उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण सौ समय करें, ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
1: तो किसान

0: भाइयों, बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में, किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का, उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा। इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी।
0: और आप सभी को मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज जो उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे अरहर दाल के बारे में, इसके प्रभेदों का चयन हम कैसे करें, कौन सा प्रभेद हम लें, सारी जानकारी आज हमारे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रफत सुल्ताना, वो बताएंगी आपको। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच।
2: मैं बता दूं सारे हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले तो दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो अरहर की खेती का क्या महत्व है?
3: थैंक यू अनु सो मच। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें ना सिर्फ इंसान और पशुओं के पोषण के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि जिस ज़मीन पर इन्हें उगाया जाता है उसे भी ये आगामी फसलों के लिए उपजाऊ बना देती है। दलहन की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर न सिर्फ अपना पोषण करता है, जिस मिट्टी में ये दलहनी फसलों को लगाया जाता है उसमें भी ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है
2: जी।
3: इसलिए दलहन की खेती का को हम सहजीवी विधि से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना भी कहा जाता है।
2: अच्छा,
3: अब हम सभी जानते हैं कि दलहन फसलें जिस मिट्टी में लगाई जाती है उसके लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, बट हमारे शरीर के लिए भी आपको

0: लगता है कि प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है। यदि मानव शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो हमारे शरीर की मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर के दाल को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, इसलिए अरहर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी थाली में।
1: जी,
0: अरहर की दाल में लगभग 21 से 22 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की बाजारी भाव भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान लोग काफ़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। पर चिंताजनक बात यह है कि बिहार में दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है।
1: बिल्कुल,
0: आज लगभग सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती बिहार में होती है। इसमें अगर आप अरहर की बात करें तो ये मात्र 27,000 हेक्टेयर में इसे लगाया जाता है।
1: अच्छा,
0: अगर हमारे देश में दलहनी फसलों और दूसरे दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में लगाया जाता है वो मूंग है, वो 1,71,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। उसके बाद मसूर आता है जो लगभग 1,45,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। फिर जा कर के आपका चना आता है जो लगभग 67,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। पर अरहर सिर्फ 27,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, जो कि अगर रकबा के हिसाब से सोचा जाए तो ये चौथे नंबर पे आता है
1: जी।
0: बिहार में। और अगर आप ये जान करके बहुत आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें अरहर की, तो पूरे देश में इतनी उत्पादकता नहीं जितने कि हमारे बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की जो उत्पादकता है अरहर की वो 1,639 केजी प्रति हेक्टेयर है
1: जी,
0: जबकि जो हमारे जो नेशनल एवरेज है उसकी जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो लगभग 776 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसके बावजूद भी हम बहुत ही कम एरिया में ही लगा पाते हैं,
1: बहुत ही कम क्षेत्रफल में जी।
0: तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ज़मीन को जो अरहर होता है ज़मीन को से पोषण लेकर उसे वापस लौटाने के लिहाज से काफ़ी इसका कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए है कि जो अरहर का जो पौधा होता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करता है। एक अगर एक सीज़न में आप अरहर लगाते हैं, एक हेक्टेयर में लगाते हैं, तो वो 40 केजी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है जीवाणुओं को द्वारा, क्योंकि इसकी जो जड़ जो होती है ना वो मूसलाधार जड़ कहलाता है। ये बहुत लंबी होती है, टैप रूट इंग्लिश में इसे कहते हैं।
1: अच्छा।
0: जिस मिट्टी पे भी इसे लगाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी स्थिरीकरण हो जाता है, फिक्सेशन होता है और वो बहुत लाभदायक होता है।
1: तो यहाँ पर अरहर की खेती के महत्व के बारे में आपने जाना कि कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए अरहर, और हमारे थाली में इसकी क्या महत्ता है, सारी चीज़ें मैम ने आपको बताई हैं। अब खेती की ओर बढ़ते हैं, तो मैम भूमि का चयन कैसा होने चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों को?
0: देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती है वो जो है उसमें अरहर एक खरीफ में लगाया जाता है। खरीफ का मतलब है कि ये जब बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है
1: जी।
0: इसलिए इसका जो है ना, आप जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको भूमि का चयन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
1: जी।
0: ये थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में अगर मिट्टी में जल भराव रहेगा तो अरहर की खेती बर्बाद ही हो जाएगी। अच्छे से क्या बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बहुत इसकी भूमि के चयन कैसे करें उसकी जानकारी मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ अभी यहाँ पे। तो अरहर की खेती हर तरह की मिट्टी में वैसे की जा सकती है, लेकिन लवणीय या क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती संभव नहीं है। अलबत्ता अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी, अगर आप मीडियम ड्यूरेशन और अल्प अवधि वाली अरहर लगाते हैं तो उसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी जो बिहार में ज़्यादातर लगती है वो होती है दीर्घ अवधि वाली, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाई जाती है यहाँ पे।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए जो है आपको अगर काली मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
1: अच्छा,
0: अगर वो वैसे खेत हो तो उसका चयन करें,
1: काली मिट्टी वाली।
0: अरहर की खेती में पानी का ठहराव हरगिज नहीं होना चाहिए।

0: ज्यादा पानी मिलने की वजह से अरहर के पौधों में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाएगी तथा उपजाव कम होने की आशंका रहती है। साथ ही फसल पर कई बीमारियां और कीटों का हमला बढ़ने का जोखिम होता है। जल भराव में वाटर लॉगिंग कंडीशन एक कहते हैं, उसमें एक जो है फंगस जो होता है वो है फाइटोफथोरा, उसका इन्फेस्टेशन मतलब उसकी जो वो बीमारी लग जाती है। अगर जल भराव भी है और फाइटोफथोरा है तो आपका जो पौधा है वो 80 से 100% तक वो आपकी क्षति होगी। अरहर के खेत में मई आप तैयारी के लिए अरहर के खेत में मई जून की गर्मियों में 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। बुआई हल्के पीछे कुंड लगाकर करनी चाहिए। सख्त मिट्टी और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में अरहर की के पौधे का तना फाइटोफथोरा बीमारी के चपेट में आकर गलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। इससे स्वास्थ्य पौधे का घनत्व बहुत कम हो जाता है और पैदावार काफ़ी घट जाता है
1: जी। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए
0: इसके लिए। जैसे अगर जहाँ पर भी जल भराव का समस्या है तो वहाँ जल भराव वाले इलाके में अरहर की बुआई के वक्त इसके कतारों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बनाकर उसे अरहर की बुआई करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: उससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। मेड़ों पर अरहर की बुआई करने से सिंचाई में 25 से 30% पानी भी बचता है, क्योंकि आपने यहाँ बिहार में अब देखे होंगे कि जो धान के किसान हैं वो मेड़ों पर अरहर की खेती करते हैं। उससे जो पानी जो धान में रहता है वो आपको साथ साथ अरहर में मिल जाता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी अरहर को मजबूत बनाते हैं और अरहर की काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे मेड़ों पे होती है। अरहर की खेती के 3 तरीके बहुत ही प्रचलित हैं और हर एक के लिए पौधे और कतारों के बीच फासला रखने के लिए अलग अलग दूरियाँ अपनाने की सलाह दी जाती है।
1: तो मैम ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, ये जानना चाहेंगे हम।
0: देखिए, देश में अरहर की खेती जैसे 3 तरीके से प्रचलित हैं, उसमें से कुछ अगेती अरहर होती हैं, कुछ मध्य अवधि वाली अरहर की प्रजाति होती है, कुछ दीर्घकालिक अरहर की प्रजाति होती है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगेती अगर अरहर लगाते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं वो अगर लगाते हैं तो इसकी ये जो प्रजाति है ये मध्य और दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा है इसका चलन है। यहाँ पर तो बिहार में बहुत ही कम है छोटी अल्प अवधि वाली। तो इसमें क्या है कि आप 15 जून तक बुआई कर दीजिए
1: जी।
0: इसकी बुआई जो है आप 15 जून तक कर दीजिए और जबकि मध्य और दीर्घकालिक जो है उसकी बुआई जो है आप 1 से लेकर 31 जुलाई के बाद कीजिए। तो एक तो इसमें बुआई का टाइम हो गया। इसमें ये भी है कि अगर आपने जैसे आपका जो अल्प अवधि वाली जो है उसकी जो पंक्ति से पंक्ति जो दूरी होती है उसको भी कम रखने की ज़रूरत है। वो लगभग आप 60 सेंटीमीटर रखिए और जबकि जो दीर्घकालिक अवधि वाली प्रजातियां हैं उसके लिए आप 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी रखिए तो आपकी फसल अच्छी होगी। और ये आप 31 जुलाई तक आप आराम से लगा सकते हैं।
1: और बात करते हैं अपने बिहार राज्य की, तो अरहर की कौन कौन सी प्रजातियां हमारे राज्य यानी बिहार के लिए सही है और उनमें सबसे अच्छा कौन सा है?
0: देखिए, जैसे बिहार में खरीफ में लगाया जाता है अरहर, और मगर लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग है
1: जी।
0: जो 1 से 31 जुलाई के बीच में लगाने वाली अरहर है जो अच्छी किस्म है वो है बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और मारवीय अरहर 13
1: जी।
0: जो बहार जो है वो भागलपुर के लिए उपयुक्त है, भागलपुर क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। इसकी उपज जो होती है 25 से 23 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 265 से 275 है केजी, 275 दिन है। पूसा 9 जो है वो आपका 250 से 260 दिनों की फसल है और ये 20 से 25 हेक्टेयर उपज देती है और ये भी भागलपुर और उत्तरी बिहार के लिए उपयुक्त है। एक है नरेंद्र अरहर वन, जो कि 260 से 270 दिनों में यानी कि 9 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। आप 31 जुलाई तक लगाइए और 20 से 25 इसमें भी केजी क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है
1: जी।
0: इसमें रोग रोधी क्षमता भी है। मिश्रित खेती हेतु उत्तरी बिहार के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। मालवीय अरहर 13 आपने देखा होगा कि मुंगेर क्षेत्र में लगाया जाता है और ये जो है थोड़ी इससे कम है, 8 महीने की फसल है और इसको भी आप 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लगाएंगे आपको लाभ होगा। जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही मानसून शुरू होता है, आप पर्याप्त मॉइस्चर हो जाए खेत में, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये मुंगेर एवं भागलपुर दोनों ज़िलों के लिए उपयुक्त है। फिर आपका आता है दो जो हमने कहा है कि अल्प अवधि की, वो उसको 1 जून से लेके 15 जून तक लगाइए। अगर ये ऐसे किसान लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश उस वक्त तक नहीं आती है, तो जिनके पास सिंचाई हो और जिनकी भूमि ऊंची हो, जहाँ पे जल निकास की पूरी तरह जल निकासी का पूरा व्यवस्था हो, आप वहाँ पर लगाइए। और उसमें से एक PA 291 है, ये पंतनगर की वैरायटी है।
1: अच्छा।
0: जो कि हमारे बिहार में बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये जो है अभी नई है, क्योंकि अभी जो भी भारत सरकार का रिकमेंडेशन है कि आप 10 साल से कम अवधि वाले ही वैरायटी को का चयन करें तो ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये PA 291 ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब अल्प अवधि की है और ये उकठा रोग जो होता है विल्ट, वो उकठा रोग से प्रतिरोधी है।
1: अच्छा।
0: और एक और जो है, जो अभी हम लोगों का जो एक सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है, सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
1: जी।
0: उसमें है IPA 203, ये IIPR कानपुर की वैरायटी, जो कि हमारे ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंडेड है, इसमें बिहार भी आता है। तो ये जो है 280 दिनों का ये है, आप अप्रैल में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी मतलब कटाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी के जो हम एक खूबी बताएंगे वो ये है कि ये जो IPA 203 है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर अरहर की जो सबसे से समस्या जो आती है लंबी अवधि वाली में, कि इसमें फूल झड़ने की समस्या दिसंबर में हो जाती है। जब भी टेम्परेचर लो होता है तो फूल झड़ जाते हैं। हाँ। इससे किसान बहुत परेशान हो जाता है और कई किसान तो छोड़ भी देते हैं कि भाई अब इसके बाद फली आएगी कि नहीं आएगी। हाँ। अब किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए ये जो किसान ऐसा सोचते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, क्योंकि इसमें जो पहली बार जो फूल आती है ना, वही आती है आपका जनवरी में।
1: अच्छा।
0: तो जो पहले जो एक बार फूल झड़ने के बाद दोबारा फूल से जो भी होता है उससे तो लॉस तो होता ही है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो बहुत ही कम होता है, कम होता है। और इसकी जो उपज क्षमता भी है काफ़ी अच्छी है। और PA 291 की जो बात कर रहे थे वो अल्प अवधि की है, 150 से 161 दिनों की प्रजाति है
1: जी।
0: एक और है जो कि हम लोग सितंबर अरहर के बोलते हैं, उसमें आप PA 9 को लगा सकते हैं। शरद भी है, पर शरद की आपको बीज मिलेगी नहीं, बिहार के लिए रिकमेंडेड है पर वो बीज उसकी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर हाँ, PA 9 जो है, PA 9 को आप सितंबर में लगा करके भी आप कम से कम 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप उत्पादकता
1: प्राप्त
0: कर सकते हैं। ये आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
1: तो श्रोताओं, आज यहाँ पर पूरी जानकारी मिली है आपको डॉक्टर रफत सुल्ताना मैम से। अरहर में प्रभेदों का चयन आपको कौन कौन सा करना चाहिए, खासतौर पर मैम ने बिहार राज्य के बारे में बताया और अपने शहर भागलपुर और भी आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया कि आप वहाँ पर कौन से प्रभेद को लगा सकते हैं, कौन सा प्रभेद आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होगा, आप कुछ जानने को मिला होगा आपको और कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपना और अपनी खेती बाड़ी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। खेती बाड़ी हो या फिर हम अपनी बात करें, दोनों ही मिट्टी से जुड़े होते हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर खाद्य सुरक्षा तक हर क्षेत्र में मिट्टी का किसी न किसी तरीके से योगदान होता ही है और यही कारण है कि हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है मिट्टी के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और मिट्टी के कटाव, प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी और उर्वरता घटने जैसी चुनौतियों पर ध्यान खींचना। तो आइए आज हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। अभी के वक्त में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार की एक अहम योजना है। इसके तहत होता यह है कि किसानों को उनके खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी वाला एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड बताता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किसकी कमी है और कौन सा तत्व आपकी मिट्टी में जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तो ये कार्ड किसानों को ये भी बताता है कि फसल के अनुसार कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कौन से पोषक तत्व की पूर्ति की जरूरत है और साथ ही मिट्टी का pH मान और लवणता स्तर भी बताता है। इससे किसानों को बहुत सहूलियत होती है, उन्हें समझ आता है कि वो किस तरीके से खाद और उर्वरक का सही उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बिना जरूरत के रसायनों के प्रयोग में कमी आती है, जिससे मिट्टी की सेहत अच्छी हो जाती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये कार्ड किसानों की खेती के लागत को घटाने में और पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अब तक हमने जान लिया है कि मृदा हेल्थ कार्ड क्या है। ये किसानों को उनकी मिट्टी की पूरी पूरी जानकारी देता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कार्ड आपको मिलेगा कैसे। तो आइए जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड आपको कैसे मिलेगा। मृदा हेल्थ कार्ड पाने की एक प्रक्रिया होती है। ये तरीका बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो कृषि विभाग यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK की टीम आपके खेत से मिट्टी का सैंपल लेती है। इसके बाद ये सैंपल मान्यता प्राप्त लैब में भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक आपके खेत की मिट्टी के अलग अलग तत्वों की जांच करते हैं। जब ये जांच पूरी हो जाती है तो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाई बहन ये कार्ड दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप किसान पोर्टल पर लॉगिन करें, जिसके बाद आप अपना सॉयल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन तरीके में आपको विभाग के द्वारा इसे सीधे प्रदान किया जाता है, यानी कि आप विभाग से जाकर अपना सॉयल हेल्थ कार्ड मांग सकते हैं, अगर आपने खेत की मिट्टी का सैंपल विभाग को दिया है तो। और जब आपकी मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनता है तो इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, ताकि किसानों को सटीक और उपयोगी जानकारी दी जा सके। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। मृदा हेल्थ कार्ड आपके खेती की योजना बनाने में एक रोड मैप की तरह काम करती है, और इसमें मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियां हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपके कार्ड पर लिखा होगा आपका नाम, गांव और खेत की लोकेशन। इसके बाद मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा, जिसमें कि NPK, जिंक और सल्फर आदि पोषक तत्वों की मात्रा उस पर लिखी होगी। वहीं मिट्टी के pH मान भी लिखे होंगे, यानी कि मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय स्थिति का भी वहां पर जिक्र होगा। और इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि आपके खेत की मिट्टी की लवणता क्या है, यानी कि EC वैल्यू क्या है। ये सारी बातें उसमें तो लिखी होती है, साथ ही ये भी लिखा होता है कि आपको आपके खेत में कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है, जिससे आपको अधिक पैदावार मिल सके। और इसके साथ ही आप अगर जैविक खेती के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आपके कार्ड में ये भी लिखा मिलेगा कि आपके खेत की मिट्टी जैविक खेती के लिए बेहतर है या फिर रासायनिक खेती के लिए बेहतर है। इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या है और इसके सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं। और जब ये सारी जानकारी किसान भाई बहनों को मिल जाती है तो उनके लिए ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि उनके खेत की मिट्टी के लिए कौन सी फसल बेहतर है और इसे फसल की उत्पादन में सुधार देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप किन तरीकों से मृदा हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और निशुल्क है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, या तो फिर किसान सीधे ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से एक टीम आपकी खेत की मिट्टी का सैंपल लेने आएगी। KVK की वैज्ञानिक टीम खेत से मिट्टी लेकर उसे लैब में भेजती है और एक रिपोर्ट तैयार करवाती है। अगर आपके पास कृषि विभाग कार्यालय या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जाने का वक्त नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसान भाई बहन घर बैठे ऑनलाइन भी अपना कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इसके लिए वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in। इस पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा और सैंपल देने के बाद विभाग समय समय पर अपडेट कर देता है और रिपोर्ट तैयार होते ही किसान को एक सूचना मिल जाती है। इसके बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड यानी कि मृदा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे विभाग से जाकर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड से किसानों के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी की सटीक जानकारी मिल गई है। वहीं जब मिट्टी की सटीक और पूरी जानकारी मिल जाती है तो उर्वरक का सही और कम उपयोग होता है, जिससे खेती की लागत घट जाती है और मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इससे फसल चयन में भी आपको मदद मिलती है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अगर आपके खेत की मिट्टी जैविक खेती के लिए उपयोगी नहीं है तो आपको बता दिया जाता है कि आपको रासायनिक खेती करना चाहिए। कई किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि मिट्टी का pH क्या होता है और ये जानना क्यों जरूरी है। मिट्टी का pH बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय। pH सही होने से फसल पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाती है। अगर आपके खेत में पोषक तत्व तो है लेकिन pH अगर सही नहीं है तो आपके खेत में फसल अच्छे नहीं होंगे, इसलिए मिट्टी का pH जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने मृदा हेल्थ कार्ड बनवा लिया है तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इसे फिर बनवाने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आम तौर पर मिट्टी का सैंपल हर 2 साल में लिया जाता है। इसके लिए मृदा हेल्थ कार्ड को हर 2 साल बाद दोबारा अपडेट करवाना चाहिए। आपको मृदा हेल्थ कार्ड में सूक्ष्म तत्वों जैसे कि जिंक, सल्फर की जानकारी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, इसलिए मृदा हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास अभी तक मृदा हेल्थ कार्ड नहीं है तो आप मृदा हेल्थ कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जल्दी से बनवा लें। इससे आपको और आपके फसल को बहुत फायदा होता है। ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मज़ेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफ़ी फास्ट चीज़ें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं, और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं, और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है, तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हों, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीज़ें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाएं। आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाए जहाँ पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे, और एक अच्छे तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना है। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ

आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में ग्रुप स्टडी में आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफी अलग होता है। वो चीजों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है। आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं। आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिवीजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियां भी बहुत सारी है। जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है। और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, कोई भी यहाँ पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल
और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा मेहनत करता है और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज़ को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविज़न कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज़ करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीज़ें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसको जानने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देख कर चीज़ें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीज़ें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहाँ पर आप चीज़ें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट हैं तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट हैं तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो कन्फ्यूज़न दूर किया या फिर किसी और के कन्फ्यूज़न को आपने दूर किया तो फिर आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें, इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है। और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीज़ों को अलग तरीके से सीखने का, समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिलाकर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर आप सभी के बीच आ चुके हैं, और खेती बाड़ी की बात करें तो आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोज कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों की सहायता के लिए, उनकी सहूलियत के लिए। बात करते हैं खेतों पर काम करने की, तो पहले बैल से हल से जुताई की जाती थी, खरपतवार जो है उनकी छटाई की जाती थी, और उसके बाद ट्रैक्टर से, जी हाँ ट्रैक्टर से किसान भाई खेतों की जुताई करने लगे और उसे खेतों के काम में उपयोग करने लगे, और उसके बाद विकसित हुआ है ऑटोमेटिक ट्रैक्टर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर आदित्य, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: सर सबसे पहले तो कृषि में ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर का महत्व कितना है, कैसे अलग है ये जो अलग जो जनरल जो ट्रैक्टर होते हैं उनसे कैसे अलग है?
3: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जब कृषि में ऑटोमेटिक ट्रैक्टर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार जो भारत जैसे देश में कृषि श्रमिकों की लगातार कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि किसान की एक आम शिकायत है कि जब वो ट्रैक्टर पे बहुत देर तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो उनको पीठ दर्द की शिकायत होती
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि ट्रैक्टर पलट जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर पलट जाता होगा, तो ये सब चीज को उससे बचने के लिए ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर एक बहुत अच्छा समाधान है, जिसमें कि ना तो किसान को खुद उस पर काम करना पड़ेगा ना ही इसमें वो ट्रैक्टर को पलटने की समस्या है, और जो कृषि श्रमिकों की जो लगातार कमी झेल रहा है कृषि, और युवा भी कृषि से बाहर निकलते जा रहे हैं
2: जी।
3: तो इससे भी ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक ट्रैक्टर के रूप में आ सकता है
2: जी। अभी के जनरेशन की बात करें तो पहले लगता है जैसे कि हमने कहानियों में सुना होगा कि लोग जो हैं हल से खेती करते थे, अब धीरे धीरे जो है खेती में भी डेवलप होने लगे हैं सारे मशीन, तो बात करते हैं अब इसके इतिहास के बारे में, डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं।
3: बिल्कुल, इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 2012 में एक कंपनी थी जिसका नाम था ऑटोनोमस ट्रैक्टर कॉरपोरेशन।
2: अच्छा।
3: ये एक कंपनी थी जिसने एक पहला मॉडल निकाला था, उस मॉडल का नाम था स्पिरिट। तो ये मॉडल ऐसा था जो कि एक सामान्य ट्रैक्टर की तरह काम करता था, लेकिन इसमें किसी भी आदमी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये 2012 में इसके ऊपर विकसित होना शुरू हुआ, और अभी बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, जैसे कि जॉन डियर उसमें एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि बहुत सारा काम इसके ऊपर कर रही है, और इस साल के अंत तक वो मार्केट में ये लॉन्च भी कर देगी ऑटोमेटिक ट्रैक्टर
2: जी। तो इसके बाद ये कैसे काम करता है इसे जानना चाहेंगे हम, कैसे काम करता है ये?
3: बिल्कुल, तो ये ऐसे काम करता है कि इस ट्रैक्टर में आपको एक ऐप रहता है, जैसे मोबाइल में हम ऐप यूज़ करते हैं वैसे ही आप एक ऐप के मदद से आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सारा कुछ आप ऐप की मदद से कर सकते हैं। ऊपर से दूसरी इसमें खूबी ये है कि ये सुरक्षा के माध्यम से बहुत अच्छा है, इसमें पलटने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जब भी हम कुछ

0: कोई मोटर गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, उसकी माइलेज देखते हैं। तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी है और इसको आराम से आप दूसरे खेतों पर भी ले जा सकते हैं, जैसे कि ये पूरा पूरी कंप्यूटर तकनीक पे बेस्ड है। और इसमें ऐसी मतलब कृषि में क्रांति लाने के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें सबसे अच्छा लाभप्रद चीज़ यह है कि इसमें ईंधन का उपयोग तो कम होता ही है, ऊपर से आप ऐप के मदद से आप सबको जान सकते हैं कि कैसे आपका स्टेटस है, आपके फील्ड में कैसा ये जुताई किया है, या कैसे इसने क्या बोलते हैं उसको वीडिंग खरपतवार का नियंत्रण ये कैसे कर रहा है। इसमें ये आपको ऐप की मदद से आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, जो आपके फील्ड का वीडियो देख सकते हैं, डेटा का आप एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप अपने ऐप की मदद से कर पाएंगे। आप चाहे कहीं दूर भी रह रहे हो तब भी आप अपने ऐप से ये सब काम कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 6 जोड़ी स्टीरियो कैमरा लगे रहते हैं, जो ये जान जाता है कि कहीं उसको खेत पर कोई बाधा तो नहीं दिख रही है। मान लीजिए अगर खेत पे कोई उसको बाधा दिखता है तो वो अचानक से वहाँ पर रुक जाता है, फिर वो उसके आगे नहीं बढ़ता है।
1: मतलब सेंसर टाइप कुछ?
0: बिल्कुल हाँ, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और सेंसर्स के अलावा इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं, जो कि जान जाता है कि आखिर किससे कौन रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई घास होगा तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन मान लीजिए कोई बोर्ड या पत्थर गिर गया हो तो वो पहचान जाएगा कि ये कुछ गलत चीज़ है, इसलिए वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये स्वचालित है, तो आप इसमें ये भी आपको बता देगा कि कौन कौन से फसलों को कौन सी पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो ये GPS से भी इंटीग्रेटेड है, मतलब जो हम आप जानते होंगे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे मोबाइल पे आजकल रहता है, गूगल मैप्स, उससे भी ये इंटीग्रेटेड है। तो बहुत सारा चीज आप एक साथ इसके थ्रू इसके मदद से कर सकते हैं।
1: जी तो ये तो हो गए कि कैसे काम करता है ये। अब हमारे किसान भाई, हमारे श्रोतागण से खरीदना चाहते हैं तो कुछ जो प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके बारे में बताएं कि कौन अच्छी कंपनी है जो सप्लाई करते हैं।
0: भारत में तो फिलहाल ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में जो इसके ऊपर लगातार लगी हुई हैं और विकसित करने के लिए लगी हुई हैं, जिसमें प्रमुख कंपनियां हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर और एस्कॉट्स। ये तीनों कंपनी ने अपना उद्योग लगा दिया है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रैक्टर
1: अभी प्रोसेस में है।
0: ये परियोजना है जो चल रही है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 तक ये भारत के बाजार में दिखने लगेगा।
1: तो ये कुछ कंपनियां हैं जो अभी इस पर काम कर रही हैं और तैयार कर रही हैं इस ऑटोमेटिक ट्रैक्टर को, और जल्द ही हमारे बीच हमारे देश में ये मौजूद होगा।
0: मैम, इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे जो मैं बताना चाहता था कि अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक के कृषि में ऑटोमेटिक अगर यंत्र का प्रयोग देखेंगे तो दो यंत्र बहुत फेमस है। वो दो यंत्र है, एक तो ड्रोन है और दूसरा है जिससे कि आप पशु का दूध निकाल सकते हैं, मतलब दूध दुहने का यंत्र। लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 2024 तक ये सब यंत्र से ज्यादा यंत्र बिकने वाला ये आपका ऑटोमेटिक ट्रैक्टर हो जाएगा।
1: जी,
0: तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं,
1: क्योंकि जो खेतों की जुताई की बात करें जो ट्रैक्टर करते हैं या हम हल से करते हैं, तो खुद एक आदमी इतने कड़े धूप में जाकर नहीं कर सकता है। देखकर ही हम डर जाते हैं कि इतने कड़े धूप में बाहर कैसे निकलेंगे। तो भाई, हमारे किसान भाई भी तो इंसान ही हैं, तो इस कड़े धूप में मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो इसलिए ऑटोमेटिक ट्रैक्टर बहुत ही उपयोग किया जाएगा और बहुत ही सहूलियत से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसकी मांग भी बढ़ती जाएगी बाज़ार में। तो क्या डॉक्टर साहब, लेकर क्या कोई समस्याएं भी आ सकती हैं?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बहुत सारी समस्याएं अभी जो अमेरिका में ये लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे किसान कुछ समस्या लेकर आ रहे हैं। उसमें प्रमुख समस्या ये है कि किसान ये जो है ये खुद से किसान इसको रिपेयर नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
0: आप जानते होंगे कि जो भी यंत्र होते हैं वो किसान सदियों से खुद से रिपेयर करते हैं अपने खेतों पर, लेकिन इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए फिर आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा, जिस कंपनी से आपने खरीदा है उसको उस कंपनी के पास ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में किसान अमेरिका ऐसे विकसित देशों में इसका विरोध कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये सब समाधान इसका किया जाए, लेकिन एक ये इसका मुश्किल ये आ रहा है। दूसरा एक मुश्किल और भी है, जो कि है कि ये तकनीक जो है जितना ज़्यादा यूज़ होगा, जितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे उतना ही ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप जानते होंगे कि मशीन लर्निंग और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना डेटा मिलता है, उतना ज़्यादा काम होता है। तो फिलहाल जो नई तकनीक होती है उसको लोग यूज़ करने में संकोचित होते हैं, तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भारत में प्रयोग करेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा यह काम कर सके भविष्य में।
1: जी जी, और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।
0: बिल्कुल।
1: तो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, ये एक नई चीज़ है जो अभी तक हमारे देश में आई नहीं है और जल्द ही आने वाली है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी की अगर खासियत है तो कुछ खामियाँ भी हो सकती है, तो इन खामियों को ना देखते हुए या फिर इन खामियों से ना डरते हुए आप इनकी अच्छाई को देखें और ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, अगर ये हमारे बीच आता है हमारे इंडिया में तो ज़रूर इस्तेमाल करें किसान भाइयों, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्नी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर जब हम बात कर रहे हैं कॉर्नी मिलेट की, तो क्या कॉर्नी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
4: देखिए कॉर्नी जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कॉर्नी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन वो जन्म स्थान है जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियाँ होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं, हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए, वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही, हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
3: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कॉर्नी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
4: तो कॉर्नी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5-10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2-3 बार जुताई करके पटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब ये है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9-10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत तो अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियां हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहां जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितने जरूरत होती है उससे ज्यादा बरसात हो रहा होता है तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली 1 सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ 2 सिंचाई भी दे। तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा, आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22-25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल को उत्पादन जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में। अगर ज्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियां हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहां हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहां हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल बिल्डर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सबका बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी की दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसेंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपके फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सक्रिय पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
3: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से।
4: किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है, जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
3: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिसे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैग्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें।
ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को ज़रूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो ज़रूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। तो अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए, तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कृषि की बात करते हैं, जब हम खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत, वो किसानों का देश है। और समय बहुत बदल चुका है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है खेती गृहस्थी। लेकिन आजकल जो कुछ युवा हैं, वो सोचते हैं कि शायद इसमें रोजगार नहीं है या फिर इसका महत्व क्या है, वो इस बारे में समझ नहीं पाते हैं। इसके बारे में समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश, मैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग में यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ और आज मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है उसके कुछ पहल जो बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और कुछ आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपके लिए भी ज्ञानवर्धन होगा। और उस क्रम में आप जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत और अपना राज्य, पूरा देश की बात की जाए तो कृषि प्रधान देश है। आज भी पूरे देश में जो रोजगार की बात है, हम लोग सब जानते हैं रोजगार दिन ब दिन गिरते जा रहा है जी। टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से काफी इंजीनियरिंग क्षेत्र में
0: रोजगार
1: घटते जा रही है, लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी रोजगार की असीम
0: संभावनाएं
1: हैं। उसमें से आज अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 45% जो 45% आबादी, लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है। और अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 80% ऊपर, 82% के आसपास। इसमें ग्रामीण रोजगार मुख्य स्रोत है। आज भी गांवों में लगभग 100% लोग खेतीबाड़ी करते ही हैं और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम उनका प्रधान कार्य है। उस दूसरा, जैसे खेती की बात की जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण आज हमारे पूरे देश की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है टोटल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक कृषि का है। आज भी एक जो अहम भूमिका सकल घरेलू उत्पाद में पूरे देश का, उसमें 18% योगदान, लगभग 18% खेती से और कृषि से है। उसमें इस बार लगभग 25-26 में, पिछले साल की अगर बात की जाए तो लगभग पूरे देश की जो हम आमदनी, जिसको हम बोलेंगे देश का भी पूरा इनकम होता है, जिसको हम अर्थशास्त्र के भाषा में उसको सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोलते हैं जी। अगर उसको आमदनी के तौर पे देखा जाए तो लगभग 24 लाख करोड़ जो है इस पर केवल एक साल में खेती से सरकार को गई है। अगर आप देखिए, आप कितना भी विकसित हो जाइए, आप कितना भी विकास कर लीजिए, चांद पे चले जाइए, मंगल पे चले, लेकिन खाने के बिना आप नहीं रह सकते
0: जी, बिल्कुल नहीं।
1: और हमारे पास जो हमारे 150 से ज्यादा आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाली देश, वहां पर हमेशा सबको खाना मिले ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा पे हम लोग जो वैज्ञानिक लोग खेती में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, देश दुनिया में काम कर रहे हैं, जिससे आज कम से कम इतना हो गया है जो हम लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो खाना के बिना मतलब भूखा सोता होगा। तो कम हम लोग, और जितनी हमारी जरूरतें हैं पूरे देश में उससे कहीं ज्यादा, लगभग दुगुनी हम लोग उत्पादन करते हैं। तो जो खाद्य सुरक्षा की बात है, आप कुछ भी कितना भी अमीर हो जाइए, खाने के बिना आप नहीं रह सकते, खाना आपको खाना ही पड़ेगा, और उसके लिए कृषि क्षेत्र ही, कृषि एक सोर्स है जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन, लगभग 320 मिलियन टन, 325 मिलियन टन अनाज हम लोग एक साल में उत्पादन करते हैं, जबकि हमें लगभग 150-200 टन की आवश्यकता है। तो हम लगभग दो डबल के आसपास तो इस मामला में हम आत्मनिर्भर हैं, चावल गेहूं दाल में आत्मनिर्भर हैं। फिर इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये विदित है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, लग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कृषि का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली गांव का विकास होगा, वो किसान का विकास होगा, गांव का विकास होगा। तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70% ग्रामीण परिवार कृषि से जुड़े हैं, 70% से ज्यादा, 45% तो मैं बताया था जो रोजगार दे रही है, लेकिन जो डायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं लगभग 70% पूरे देश में। आप मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है, पूरे में पूरे जनसंख्या का 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। उसमें से मनरेगा, मनरेगा का नाम अभी जी राम जी नया नाम जी, रखा जी, गया है। फिर पीएम किसान जैसी योजनाओं का आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्राम गाँव में लोग इससे इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। फिर इससे जो आर्थिक प्रभाव भी जो हुआ, उसमें उद्योगों का कच्चा माल, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो पूरी तरह खेती पर आश्रित है। जैसे आप जितने जैम जेली बिस्किट चाय, आप जो भी इस तरह के खाद्य पदार्थ से बने हुए सामान आप जो भी लेते हैं, वो सारा का सारा खेती पर, कृषि पर आधारित है। तो जितनी खाद्य प्रसंस्करण, बहुत सारे वस्त्र जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके आधे से ज्यादा कपड़े जो हैं प्योर सूती के होते हैं या कपास के होते हैं, जिसको जूट बोलते हैं, कॉटन। अब कॉटन जो है जो सूती के, वो तो पूरा का पूरा खेती में ही होगा, कृषि आधारित ही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चीनी, पूरा चीनी उद्योग जो है वो पूरा का पूरा खेत पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। तो इस तरह से लगभग 14% औद्योगिक उत्पादन खेती से होता है। फिर निर्यात, निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुआ है। पहले जब हम हमारी देश आज़ाद हुई थी तो उस टाइम हम भूखमरी थी, खाने को नहीं मिल रहा था, और आज हम लोग $11 बिलियन का केवल चावल निर्यात किए, $11 बिलियन। फिर मसाले, सब्जियां, इसमें मसाले में हम शुरू से ही मतलब हमारे बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी पहुंच रही है, और हम हमेशा से हम उसमें एक नेतृत्व किए, और भारतीय मसालों का काफ़ी मांग है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। 2025 में कृषि निर्यात लगभग $50 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 25-26 के। फिर जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, वो सब में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जैसे महंगाई, प्याज का दाम बढ़ता है तो दूसरे चीज का भी दाम बढ़ जाएगा।
0: जी, जी।
1: तो ये जो है इसमें हम जब हमें इन्फ्लेशन को कम करना हो, उसमें भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अच्छी फसल होगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई मतलब सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो दाम घट जाएगी, महंगाई नियंत्रित होगा। फिर अगर हम जितना ज़्यादा बाहर भेजेंगे, हमारी ज़रूरतें मान लीजिए 200 मिलियन टन का है और हम उगा रहे हैं लगभग 350, तो जो बाकी का 125 मिलियन टन है विदेश भेजते हैं, निर्यात होता है, उससे हमें विदेशी मुद्रा का खजाना हमारा पूरे दुनिया में मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसमें आज जो विदेशी मुद्रा, जो एक्सपोर्ट, जिस फसल का जितना मतलब यहाँ से जितना एक्सपोर्ट होगा उतना विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, उसमें हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय का भी अहम योगदान है। कैसे, जो हम लोग 5 फसलों को GI करवाने में, जो GI टैगिंग कर देने में जो हमारी प्रयास रही, उसमें जो हम सफल हुए, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत अपने देश में भी काफ़ी मांग बढ़ी दूसरे बाजारों में, जिससे जैसे उससे आमदनी बढ़ा। और विदेशी मुद्रा जब हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट होता है तो उससे विदेशी मुद्राएं का भंडार बढ़ रहा है। उसमें जो मखाना का मिथिला मखाना के नाम से जब GI टैग मिला, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा विदेश में भी मांग बढ़ी, और उसके कारण समझे उससे विदेशी मुद्रा भी हमारा बढ़ रहा है। बिहार जैसे राज्यों में मखाना निर्यात उल्लेखनीय है, और जर्दालू आम का भी निर्यात काफ़ी बढ़ा है इससे। फिर उसमें क्या क्या अब चुनौतियां हैं, अब जब हम कृषि जब इतना हमारे लिए जरूरी है, इतना ज़्यादा लोग इस पे आश्रित हैं, इतने ज़्यादा रोजगार और भी ज़्यादा रोजगार वृद्धि की संभावनाएं हैं, तो क्या क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं और क्या उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे आज भी हमारी उत्पादकता जो है, जो अगर हम बोलें जो प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर जितनी उत्पादन होनी चाहिए, आज भी हम अमेरिका जापान जैसे देशों से बहुत कम है। तो हमारे पास जो खेती योग्य जमीन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता कम है। अगर उत्पादकता बढ़ा दी जाए तो हमें, और हम जितनी उत्पादन कर रहे हैं उससे डबल हम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे प्रति हेक्टेयर उपज वैश्विक औसत से 50% कम है हमारी, मतलब जितना औसत जो पूरी दुनिया की है उसके आधार से, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हमारा आधी है, 50% कम है। और मानसून पे निर्भरता हमारी जो है 60% है। अगर बारिश नहीं होती है, वर्षा अगर ठीक से नहीं होती है मानसून में, तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन कम हो जाता है। 60% क्षेत्र जो है मतलब वर्षा पे आधारित सिंचाई क्षेत्र है। फिर जलवायु का क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे सूखा, बाढ़। बिहार में ही लीजिए तो दक्षिण बिहार जो सूखा पीड़ित है और उत्तर बिहार जो बाढ़ में डूबा रहता है, तो 5-10% उत्पादन का लॉस हो जाता है इसमें जो, और उसको कवर करने के लिए ऐसे सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवस्था किया है। फिर उससे बाजार सुधार की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य में आज देखिए जो APMC नहीं है, उसके लिए हमें MSP नहीं मिल पाता है, तो ये सब यहाँ पर भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो APMC हो गया, ई नाम हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे इस बार मैंने बताया, जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इस बार बजट में 1.64 लाख करोड़ रुपया बुनियादी ढांचा के लिए दिया गया। और ड्रोन तकनीकी, मतलब इस बार जो एडवांस अब जो है टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाना जरूरी है अगर आपको उत्पादकता बढ़ाना है। तो जैसे AI हो गया, भारत विस्तार योजना जिसको बोलते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के, फिर ड्रोन आजकल इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, इस सब को बढ़ावा की आवश्यकता और है। अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो राज्य GDP

0: से आय दुगुनी का लक्ष्य रखा गया है।
1: सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से भारत और कृषि का रिश्ता आज भी मजबूत है और कुछ चुनौतियां हैं जिसके लिए काम किया जा रहा है और सरकारें काम कर रही है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सी बातें बताई आपने।
0: जी धन्यवाद मैम।
1: दोस्तों, आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह टॉपिक लेकर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर MP मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
6: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग

0: सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्राल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
0: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
1: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
0: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
1: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
0: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
1: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
0: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नीमा, CKP 25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो।
0: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के 1 वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
0: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
1: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
0: रोपण का कार्य वर्ष में 2 बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
0: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2 से 2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
1: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
0: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3 से 4 कटाइयों प्रति वर्ष।
1: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
0: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
0: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग है लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियों सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
1: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
0: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45 से 50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या होता कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
0: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
0: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी सेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
1: जी तो श्रोताओं, आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा, और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले।
आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही, लाभ कई।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्र नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: Ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो तरबूज का रस नहीं, आपको चाहिए होगा 2 चम्मच तरबूज का रस, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने। और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए होगा 1 छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है ठीक है। तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
4: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। खास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
3: जी,
4: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं
3: जी,
4: वो भी फूलगोभी में ज्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है
3: जी।
4: तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
3: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
4: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको

0: हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल वन है, पूसा स्नोबॉल टू है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
0: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से। या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूलगोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
0: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लिए लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष,
0: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
1: जी।
0: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं। उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी

0: चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए। और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है, वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए। और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए। और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रुपाई करते हैं, रुपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा,
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
1: मतलब
0: तैयार होती है,
1: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो
0: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
0: बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएँ फूल गोभी के लिए?
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा,
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद आपने जब रोपाई कर दिया, रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फोट से फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बना रहता है,
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका
1: ताजा तरीन दिखेगा,
0: ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
0: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता
1: जी, जी।
0: तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस में उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस में उगाई जानी चाहिए, और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल?
0: हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
1: अच्छा,
0: है तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है, और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोए से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान पहुंचा,
0: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो अच्छा। इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है, इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 liter पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 liter पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 gram प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
6: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
5: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
6: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
5: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
6: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीट प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
5: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
6: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
5: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
6: बिल्कुल।
5: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
6: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को ले और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा। आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंत U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
5: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
6: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है। लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का जरूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
5: जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद आपको भी।
5: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दे और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाए। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
2: जी,
3: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
3: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
3: धरती का हरियाला उत्सव।
4: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
5: नाना जी, नाना जी।
6: अरे ऋतिक,
7: रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
5: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
8: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
9: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
7: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
8: ये लो, नानी जी भी आ गई।
10: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
7: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
10: हाँ वो तो है।
5: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
10: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
7: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
5: कहाँ से आया है
7: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
5: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
7: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
7: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
5: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
7: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
5: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
7: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
5: अच्छा नाना जी।
7: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
5: अच्छा।
7: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
5: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
7: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
10: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
7: हाँ।
10: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
5: ओ।
10: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
7: बिल्कुल।
10: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
5: अच्छा।
10: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
5: अच्छी अर्थव्यवस्था।
10: हाँ।
7: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
5: वो कैसे?
10: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
5: ओ।
10: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
7: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
5: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
8: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
2: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते।

0: शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई।

0: और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
1: प्रणाम महात्मन।
2: जीते रहो पुत्र।
1: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
2: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
1: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
2: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।